0: श्रोताओं, जिस संकेत धुन को आपने अभी सुना वो पहचान है हमारे रेडियो की, और इस धुन की रचना का श्रेय वाल्टर कॉफमैन को जाता है। और आपको बता दें श्रोताओं कि इस धुन के लिए वायलिन बजाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस्ताद जुबिन मेहता के पिता मेहाली मेहता हैं। और इस सुप्रसिद्ध धुन को आप हर दिन सुबह के 5:03 पर 2 मिनट के लिए रेडियो प्रसारण शुरू होने से पहले सुना करते हैं।
1: श्रोताओं, रेडियो ने शब्दों को पंख दिए, जज्बातों को उड़ान दी, हर घर हर दिल में रेडियो ने अपनी एक अलग पहचान दी।
0: श्रोताओं, पीढ़ियां बदली मगर बदला नहीं अंदाज, 90 सालों से गूंज रही है वतन की आवाज।
1: जी हाँ, जब देश में टेलीविजन की चमक नहीं थी और मोबाइल का नामोनिशान नहीं था,
0: तब दादाजी की सुबह की चाय से लेकर किसानों के कृषि जगत तक और युवाओं के विविध भारती के फिल्मी गानों से लेकर देश दुनिया की खबरों तक
1: आकाशवाणी हर घर का एक सदस्य बनकर रहा। बाढ़ हो या सूखा, युद्ध का दौर हो या क्रिकेट मैच का रोमांच,
0: आकाशवाणी की आवाज ने हमेशा देश का हाथ थामे रखा। गांव की चौपाल से लेकर महानगरों की इमारतों तक इस आवाज ने सबको एक धागे में पिरोया है।
1: दूर रहकर भी जो हर दिल के पास रहता है, आकाशवाणी से ही तो अपनों का एहसास रहता है।
0: कितनी अच्छी बात कही है ना इन पंक्तियों में सुनीता।
1: बिल्कुल संगीता जी,
0: आज हम सलाम करते हैं 90 साल के इस पड़ाव को और उन सभी आवाजों को, उन फनकारों को, उन तकनीशियनों को और सबसे बढ़कर आपके और हमारे श्रोताओं को,
1: जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने दिलों में बसाए रखा। तकनीक बदली, रेडियो सेट से हम आपके मोबाइल के स्क्रीन तक आ गए, लेकिन जो नहीं बदला वो है हमारा और आपका प्यार।
0: आइए इस जश्न की शुरुआत करते हैं और एक ऐसे ही सदाबहार नगमे के आपको सुनवाते हैं जो आज भी उतना ही ताजा है जितना कि आकाशवाणी का ये सफर। तो सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आकाशवाणी पर ये गीत।

0: 90 वर्षों का यह सफर सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है, बल्कि यह सफर है देश के बदलने का, हर सुख दुख में आपका हम सफर बनने का।
1: आज से 9 दशक पहले जब रेडियो की गूंज आपके घरों तक पहुंचती थी, तब से आज डिजिटल युग के पॉडकास्ट और एफएम तक रेडियो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि हर दौर में और भी जवां होता गया।
0: बिल्कुल संगीता जी, खेत खलिहानों में किसान भाई बहनों को मौसम का हाल बताने से लेकर सरहद पर डटे जवानों तक अपनों का पैगाम पहुंचाने तक, क्रिकेट की रोमांचक कमेंट्री से लेकर सदाबहार गानों की सुरीली महफिल तक,
1: रेडियो ने हमेशा हमारा साथ निभाया। यह सिर्फ एक यंत्र नहीं, बल्कि हमारे परिवार

0: का एक अटूट हिस्सा है।
1: तो आइए रेडियो की इस अद्भुत अटूट और बेमिसाल 90 वर्षों के सफर का जश्न मनाएं
0: और दुआ करें कि आवाज और एहसास का यह कारवा यूं ही सदियों तक चलता रहे। तो श्रोताओं, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो के साथ।

0: इंदर सिंह भाटिया जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी चयबासा के स्टाफ को, पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद। हरजिंदर जी, आप कब से हमारे रेडियो के नियमित श्रोता हैं?
0: 50 साल हो गए हैं।
1: हरजिंदर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहा है और आप कैसे इस रेडियो से जुड़े हुए हैं?
0: शुरू से मैडम, पहले तो फरमाइश भेजते थे, फिर उस समय तो टीवी था नहीं
1: जी,
0: वो खेल समाचार और ज्ञानवर्धक बातें सब मनोरंजन सब रेडियो से ही हम लोग को मिलता था। अभी ना आई है टीवी, पहले तो पूरा रेडियो को, अभी भी रेडियो का महत्व कम नहीं है। आज पूरा, आज की डेट में भी मैं पूरा हर जगह फरमाइश भेजता हूँ, वो खासकर चयबासा मेरा पसंदीदा स्टेशन है आकाशवाणी।
1: धन्यवाद हरजिंदर जी, आपको चयबासा को अपनी पसंद बनाने के लिए। तो हरजिंदर जी, आकाशवाणी चयबासा से प्रसारित किए जाने वाले कौन से कार्यक्रम आपको सर्वाधिक पसंद है?
0: मैडम, ज्यादा तो फरमाइशी है जो चलता है, आपकी पसंद, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं लेकिन सुनने का मौका कभी कम मिलता है, लेकिन ये दोनों फरमाइश प्रोग्राम तो मैं बिना नागा डेली सुनता हूँ और फरमाइश भेजते रहता हूँ।
1: जी धन्यवाद आपका हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। हरजिंदर जी, आज टीवी पे भी क्रिकेट मैच दिखाया जाता है, उसके बावजूद भी आप रेडियो पे कमेंट्री सुनते हैं क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच की?
0: जी जी, क्रिकेट मैच में, क्रिकेट का थोड़ा फैन हूँ, खेलता तो नहीं हूँ लेकिन क्रिकेट में मेरी बहुत रुचि रही है।
1: और आपको याद भी होगा हरजिंदर जी कि पहले के समय में जब रेडियो ही एकमात्र साधन था हमारे संचार का, उस समय हम लोग नाटक वगैरह भी इससे सुना करते थे। जब नाटक का प्रसार किया जाता था तो ऐसा लगता था कि वो चलचित्र की भांति हमारे सामने वो घटनाएं,
0: बिल्कुल बिल्कुल लग रही है, लगता ही ऐसा ही लगता था
1: जी, सजीव चित्रण होता था उसका, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की।
0: अभी भी कम नहीं है मैडम, अभी पूरा एकदम
1: जी
0: रेडियो
1: नहीं, बिल्कुल भी रेडियो की उपलब्धि कम नहीं है, और आप जैसे कर्मठ और निष्ठावान श्रोता अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो हमारी उपलब्धि कहीं भी कम हो ही नहीं सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनीता जी, आइए अब हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आकाशवाणी की शुरुआत कैसे हुई और इसकी प्रारंभिक यात्रा कैसी रही।
3: बिल्कुल,
2: आकाशवाणी की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी,
3: जब भारत में रेडियो प्रसारण अपने शुरुआती चरण में था। 1936 के आसपास इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया।
2: इस समय इसका उद्देश्य सीमित था, सूचनाएं, समाचार और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करना ही उस समय इसका उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे यह मंच भारत की विविधता को एक सूत्र में, वो खेती करते हुए भी रेडियो को सुनते हैं।
4: जी, मैं सुनील गोप, ग्राम खड़पोस, प्रखंड मझगांव से।
5: आपका हमारे किसानवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
4: जोहार।
5: किसान भाई बहनों, आज हमें सुनील गोप जानकारी दे रहे हैं आलू की खेती और खेत की तैयारी के विषय में। तो सबसे पहले सुनील जी, आप हमें ये बताइए कि आलू की खेती के लिए जमीन कैसा होना चाहिए?
4: आलू की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छा होता है
5: जी,
4: और बालुई दोमट मिट्टी में इसकी उपज अच्छी होती है
5: जी,
4: और जहाँ इसकी खेती करते हैं वहाँ पानी का अच्छा सुविधा होना चाहिए, और जहाँ हल्की गर्म जमीन है वहाँ आलू की जो फसल है और भी अच्छा होगा
5: जी।
4: और इसका भी ध्यान रहे कि खेत में पानी जमा ना हो, इससे फसल खराब हो सकते हैं
5: जी।

बले बले हीरे भरती फिर देश की धरती।

0: हम चाय वसा बड़ा बाजार से विनोद कुमार पवन बोल रहे हैं
1: जी। विनोद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
0: हम रत रत से भी 90 साल पूरा होने पर आकाशवाणी का बहुत बहुत बधाई हुए शुभकामना
1: जी।
0: ऐसे भी हम 15 साल की उम्र से
1: जी।
0: रेडियो रेडियो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं।
1: विनोद जी, अगर बात की जाए आकाशवाणी पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की, तो आपको कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
0: हमको फरमाइशी पुराम अच्छा लगता है, पत्र पसंद अच्छा लगता है। आग्रह करेंगे कि जो भी पुराम बंद हो गई है अति कोरोना काल से, तो उसको फिर से चालू किया जाए।
1: हम आपकी ये बात जरूर हमारे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको एक बार फिर से आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: मुझे याद है कि लोग जो है एक चौपाल पर बैठ करके एक रेडियो बजाते थे और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एकदम गोल घेरा बना के बैठते थे।
3: बिल्कुल।
2: और समाचार हो या गीत संगीत हो या फिर जो भी प्रसारित होती थी रेडियो से, लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: संगीता जी, जिस तरह से हम सूचनाओं को लेकर के बात कर रहे हैं कि आकाशवाणी ने सूचनाओं को
3: जन जन तक पहुंचाने का
2: पहुंचाया है, और सिर्फ चौपाल तक ही नहीं, अगर हम बात करें तो आपातकालीन स्थिति में भी आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: इसके अलावा एक और बात बताएं सुनीता जी, कि इस समय ही हमने अपने आप को डिजिटलाइज किया है ना।
2: बिल्कुल।
3: पहले जो रेडियो यानी आकाशवाणी को हम एक सीमित जगह पे सुन पाते थे, यानी कि कुछ एक दायरा होता था, उतनी दूरी पे ही हम इसको सुन पाते थे, लेकिन उस समय हम इस दायरे को तोड़ करके हम आगे निकले और हम डिजिटलाइज हुए और ऐप के जरिए हम मोबाइल पे आए, यानी कि जिसके पास स्मार्टफोन है हम उस फोन में ऐप के जरिए रेडियो को सुन सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: बस होना चाहिए आपके पास इंटरनेट।
2: बिल्कुल। और इसकी अगर हम बात करें आकाशवाणी की, तो सबसे बड़ी सफलता ये है संगीता जी, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात कहने के लिए सबसे पहले आकाशवाणी को ही चुना।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, करीब एक महीने के बाद मैं फिर से आज आपके बीच आया हूँ। एक महीना बहुत लंबा समय होता है, बहुत सारी घटनाएं देश और दुनिया में होती रहती हैं। आप सबने भी उमंग और उत्साह के साथ पर्व मनाया। उत्सवी हैं जो समय समय पर जीवन में उमंग भरते रहते हैं।
2: आकाशवाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो कला संस्कृति की समझ को बढ़ावा देता है और सही सूचना का प्रसार लोगों तक करता है। आकाशवाणी ही विविधता विशिष्टता लोगों तक पहुंचाने का काम करता है।
3: जी बिल्कुल। वैश्विक आपदा के समय भी आकाशवाणी ने बिना रुके बिना थके लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम किया है। हमारे श्रोताओं ने भी बड़े निष्ठा और प्यार के साथ आकाशवाणी का साथ दिया है।
2: आज के दिन आकाशवाणी केंद्रों में काम करने वाले लोगों के योगदान, उनकी मेहनत और उनकी कला और बहुमुखी प्रतिभा उनके द्वारा आप तक स्वास्थ्य, मनोरंजन और जानकारियों के पहुंचाने के प्रयासों का अभिनंदन करने का एक अवसर,
3: ताकि वो आपसे प्रशंसा और प्यार पाकर और भी ज्यादा प्रयास करेंगे कि वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे और

0: नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
1: मोर नाम मंगल लोरा को गांव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
2: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
3: मितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
4: अन्य मितुम दो मुंबई कोड़ा पटन मितुम दो कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन मितुम कितना ही कोड़ा मैंने में उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुलम कोई यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको नहीं मिया
5: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम तेरी ना मिल आप ही लेते ना।
0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

స్వయం ఇది కట్టుబడే భారతీయ సేనా. इस संदेश के बाद कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल इजाजत का ये गीत आशा भोसले के स्वर में.

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल का पुनः प्रसारण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मोहरा के इस गीत से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कांटे से। आवाजें हैं कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

अभी आपने सुना कभी हाँ कभी ना का ये गीत कुमार सानू और देवकी पंडित के आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म किस्मत से।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का छाई बसा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं

0: लांस नायक अल्बर्टिक का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा, यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू, यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र

0: मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
1: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
2: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
3: आ गए भैया।
2: हाँ।
3: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
2: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हरगोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा,

0: तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है।
5: हाँ?
4: टूट फूट गई है तो भी

0: घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिन के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिन को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा

0: water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: सफर कठिन है सही, मगर आगे बढ़ना जिंदगी है। कांटों से भरी राहों में फूलों सा खिलना जिंदगी है। हार जीत की फिक्र छोड़कर कोशिश करना जिंदगी है। गमों के गहरे साए में भी मुस्कुराहटे ढूंढ लेना जिंदगी है। इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूँ रचना
1: और मैं हूँ मोनिता।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार जोहार। और मोनिता कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो रचना?
0: बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत गर्मी है, तो थोड़ी इस गर्मी से लोग सारे परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी को हम बढ़ने नहीं देंगे। कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: सच में मोनिता, बहुत ही खूबसूरत गाना था, और अगर आप सच में किसी की मुस्कुराहट की वजह बनती है तो इससे बड़ी बात और जिंदगी में क्या हो सकती है।
1: वो है ना इंग्लिश में एक सेइंग कि व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, मतलब कि जो भी आप बांटते हैं वही आपके पास बढ़ता है, चाहे वो धन हो या फिर अन्न, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या मोहब्बत।
0: इसीलिए सोच समझ कर बांटिए, क्योंकि वही लौट कर आपके पास आएगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि प्यार
1: बांटते
0: बांटते
1: चलो।
0: चलो।

0: जी हाँ, प्यार बांटते चलो, और इसी तरह से हमारा सफर भी अब आगे बढ़ता रहेगा प्यार के साथ साथ ही। लेकिन अब मोनिता बात करते हैं मौसम की, तो
1: जी
0: मौसम की क्या बात करें, मौसम तो हर समय बदल रहा है, कभी कुछ
1: कभी
0: कभी
1: धूप कभी छांव।
0: कभी लगता है कि अभी बारिश होगी और बारिश होती नहीं है, और कभी इतनी ज्यादा धूप हो जाती है अचानक से।
1: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस फटाफट कपड़े उतार लो कि बारिश ना आने वाली है।

0: अचानक इतनी धूप हो जाती है कि समझ ही नहीं आता।
1: बस तो मौसम ऐसा है ना कि तुमको ऊपर नीचे भगाता रहता है। और अभी भी मौसम के ऐसी हालात हैं कि बोल रहा है कि 13 जिलों में से 11 से 13 जून तक बारिश का अलर्ट अभी बताया जा रहा है। और रांची में भी यानी कल जो है वो आंशिक बादल छाए हुए थे और उमस भी काफी थी, जिससे कि लोगों को दिक्कत हुई। और इस दौरान रांची का कल जो तापमान था, अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि 24 घंटे पहले की तुलना में 2.6 डिग्री अधिक था।
0: और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है और कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना है। तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो छतरी जरूर लेके जाएं, धूप से भी बचाएगी और बारिश
1: से। और ये वैसे भी हमारी आदत में शामिल होना चाहिए कि हम कभी भी बाहर निकले चाहे मौसम कैसा भी हो, एक पानी की बोतल और छतरी जरूर हम साथ लेके चले।
0: और अगर बारिश हो तो ध्यान रखे कि मतलब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ना खड़े हो, क्योंकि अक्सर ये न्यूज आती है कि वहाँ वज्रपात होती है और कभी कोई अनहोनी भी हो जाती है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से 11 से 13 जून तक रांची समेत खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस दौरान ये बताया गया कि 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
0: तो तुम ये कहना चाहते हो रचना कि मौसम बहुत प्यारा प्यारा हो सकता है।
1: हाँ, हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि मौसम तो अपने रंग बदल ही रहा है। हो सकता है थोड़े दिनों में बारिश हो तो थोड़ी राहत हमें गर्मी से मिले, गर्मी से राहत मिलती रहेगी, लेकिन तब तक हम एंजॉय करते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मोनिता, चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और समय एक ऐसा पहिया है जो कभी नहीं रुकता। समय के हर सेकंड में कुछ न कुछ बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे समय खुद एक जगह नहीं रुकता। समय का ये पहिया देश और दुनिया में घट रही घटनाओं को इतिहास के पन्नों में दर्ज करता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास की, तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं आज के इतिहास के बारे में।
2: आज ही के दिन यानी 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और अगर हम बात करें 1999 में तो कुली ऑडिनो माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण तथा उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाले विश्व की पहली महिला बनी थी।
1: और 1980 में 9 जून के ही दिन अंतरिक्ष यान सौपूज T2 पृथ्वी पर लौटा था। और 9 जून 1959 को अमेरिका ने USS जॉर्ज वाशिंगटन सबमरीन को लॉन्च किया था। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस ये दुनिया की पहली सबमरीन थी।
2: और 1975 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदन की कार्रवाई का रेडियो पर लाइव प्रसारण शुरू किया गया था। 1934 में आज के ही दिन मिक्की माउस के बाद डिज्नी का दूसरा सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक पहली बार दर्शकों के सामने आए थे।
1: और 2006 में 9 जून के ही दिन म्यूनिख में विश्व कप फुटबॉल की रंगारंग शुरुआत हुई थी।
2: और 9 जून 2008 को केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित किया। और 2008 में ही अमेरिका की एक ऊर्जा कंपनी ने पवन ऊर्जा के टरबाइन निर्मित करने वाली कंपनी
1: सुजलान एनर्जी
2: लिमिटेड के 160 मेगावाट्स खरीदने का ऑर्डर रद्द किया।
1: और 9 जून 2008 को ही फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा पुरस्कार समारोह में फिल्म

0: रचना, हम अपने श्रोताओं को आज के इतिहास के बारे बता रहे थे, तो आज है 9 जून और हर दिन अपने साथ कुछ खास और नया जरूर लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आज किन सुप्रसिद्ध हस्तियों का जन्मदिवस है। तो अगर हम 1933 की बात करें तो आज के दिन सुप्रसिद्ध भारतीय कवि,
1: संस्मरणकार,
0: कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का जन्म हुआ था।
1: और वसंत देसाई का जन्म भी आज ही के दिन 9 जून 1912 में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म भी आज ही के दिन यानी 9 जून 1949 को हुआ था।
0: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज के दिन भारतीय अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म दिवस है, जिनका जन्म 1975 में हुआ।

0: था और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से वो सुपरस्टार, पहली फिल्म से
1: बिल्कुल।
0: सुपरस्टार बन गई थी।
1: और भारतीय अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म भी आज ही के दिन 9 जून 1985 को हुआ था। वह अभिनेत्री के रूप में एक अपने करियर को शुरू करने से पहले उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ एक सहायक के रूप में काम किया था।
0: मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने
1: शुरुआत
0: शुरुआत
1: की
0: की थी, और उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से अपने करियर की शुरुआत भी की थी, जो भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके गाने बहुत
1: बहुत
0: ज्यादा
1: सही
0: पॉपुलर
1: में।
0: हुए थे।
1: हाँ तो चलो क्यों ना सोनम कपूर के जन्मदिन के अवसर पर सुन लेते हैं सांवरिया फिल्म का ही ये खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: और आज मुनीता महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का निधन आज के दिन यानी 9 जून 1900 को हुआ था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब झारखंड है में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। और उन्हें आदिवासियों का भगवान भी कहते हैं और धरती आबा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। बिरसा मुंडा की उम्र भले ही छोटी थी लेकिन कम उम्र में ही वे आदिवासियों के भगवान बन गए थे। और 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी बगावत की और ये महाजन कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। बिरसा मुंडा के निधन तक चला ये विद्रोह उलगुलान नाम से जाना जाता है।
1: और हम अपने श्रोताओं को ये भी जरूर बताना चाहेंगे कि बिरसा की शहादत के केवल 3 वर्ष के बाद 1903 में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ब्रैडली वॉट ने छोटा नागपुर अ लिटिल नॉन प्रोविंस ऑफ द एम्पायर में धरती आबा की कहानी को स्थान दिया। और इसके बाद 1912 में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एस सी रॉय ने द मुंडाज एंड देयर कंट्री में मुंडाओं के इतिहास, सामाजिक संरचना, भूमि व्यवस्था, धर्म आंदोलन और बिरसा के नेतृत्व में हुए उलगुलान का विस्तृत उल्लेख किया था। और इस पुस्तक को मुंडा संस्कृति का एक प्रकार का विश्वकोश माना जाता है रचना।
0: और आज भगवान बिरसा मुंडा की शहादत का 126वां वर्ष है। आज उनके शहादत दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए।

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: और इतिहास की बात हम कर रहे हैं जिनका आज के दिन निधन हुआ था, तो 1931 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शहीद स्वतंत्रता सेनानी हरिकिशन सरहदी का निधन हुआ था.
2: राज खोसला जो एक हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे, वे भी 9 जून 1991 में हम सबको छोड़कर चले गए थे. और 1995 में आज के दिन ही हिंदी फिल्म निर्देशक सत्येन बोस का निधन हुआ था.
1: और 2011 में प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु हुई थी. और प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली भी आज ही के दिन यानी 9 जून 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. और उनके द्वारा मैंने प्यार किया फिल्म में लिखे गए गीत को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था. तो चलो सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत.

0: देखो मोनिता, बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैंने सुना है, तुम्हें भी अपने अपने श्रोताओं को भी। और इस खूबसूरत गीत के बाद हम अब ले चलेंगे अपने श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत जगह में।
1: तभी से मैं सोच रही थी कि रचना कहीं घुमाने लेके क्यों नहीं जा रही है हमारे श्रोताओं को, जबकि अभी वेकेशंस का टाइम भी चल रहा है।
0: इसीलिए तो बता रही हूँ ना कि आज हम जाएंगे मुन्नार की सैर करने।
1: अरे वाह,
0: और मुन्नार यानी कि केरल में मुथिरापुझा, नल्लाथनी और कुंडला नदियों का संगम स्थल मुन्नार अंग्रेजों के जमाने में गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था। तो इसीलिए अभी गर्मी की वेकेशंस भी चल रही हैं, तो लोग जाना भी चाहते होंगे, तो हम मुन्नार की बात करेंगे। कोची हवाई अड्डे से लगभग 130 किलोमीटर दूर मुन्नार पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। घुमावदार सड़कें, पहाड़ी पर हरी लहरों की तरह चाय बागान और नारियल के पेड़ों के साथ चारों तरफ फैली हरियाली में पता ही नहीं चलता कि सफर कब खत्म हो गया।
1: और मुन्नू का अर्थ 3 है, जो कि आरू का अर्थ नदी, समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर ऊपर मुथिरापुच्छा, नल्लाथनी और कुंडला नदियों का संगम स्थल मुन्नार अंग्रेजों के जमाने में भी गर्मी का विश्राम स्थल था। और इंग्लैंड भेजने के लिए चाय, कॉफी व गर्म मसालों का संग्रह का ये क्षेत्र भी था। और यहाँ पर 2700 मीटर ऊंची आनामुड़ी चोटी ट्रैकिंग के लिए अच्छी जगह है, और साथ ही साथ माठ पेटी में सुंदर झील किनारे बैठकर आसपास के पहाड़ियों और हरियालों का नजारा भी बहुत खूबसूरती से आप
0: देखो,
1: ले
0: तुम जब
1: सकते
0: बोल रही हो ना
1: हैं।
0: सब, तो मुझे लग रहा है कि सच में वहां जाऊं, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है।
1: शौक
0: अच्छा है, लगता
1: है।
0: है कि पहाड़ों पे जाना, ट्रैक करना, तो और जिनको ट्रैकिंग का शौक है वो इस जगह पर जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हरियाली जिनको पसंद है तो ये तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और साथ ही साथ वहां पे हम पद्मनाभ स्वामी का दर्शन भी

0: बड़ी बात है कि फ्रेश टी आपको वहाँ पे मिलेंगे।
1: तो कितनी अच्छी बात है ना कि आप साथ साथ वहाँ चाय खरीदेंगे भी और घूम भी सकते हैं चाय बगान भी।
0: तो आप चाय के हरियाली के साथ एक हरियाला सा प्यारा सा गीत भी सुना दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल।

0: ये हरियाली और हरियाली पे मुड़ते हुए खूबसूरत से रास्तों पे जाते हुए हमने काफी चाय पी ली, बहुत सारे पकौड़े खा लिए हैं, नमकीन बिस्किट्स भी खा लिए साथ में, है ना
1: इतना कुछ
0: रचना?
1: खाओगी तो फिर सेहत का क्या होगा?
0: मैं समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा अभी हमने श्रोताओं को ये बताने का है कि सेहत का ख्याल कैसे रखें।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है सेहत का ख्याल रखना भाई आजकल। तो आज क्या हम बातचीत करेंगे मोनिता?
0: आज हम बात करेंगे कि हमारे खान पान से और हमारे रहन सहन से हमारे हृदय यानी दिल पे क्या असर पड़ता है। तो
1: इसीलिए बोल रही थी भी खाने पीने से कि पकोड़े खाएंगे, चाय पी ली है।
0: तो हृदय रोग एक गंभीर स्थिति है और जिसके लिए हमेशा डॉक्टर से परामर्श करता रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हृदय रोग के लक्षण की अगर हम बात करें तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, भारीपन, सांस लेने में कठिनाई या जल्दी थकान महसूस करना, घबराहट होना,
1: पैरों, टखनों या पेट में सूजन होना, अचानक बहुत अधिक पसीना आना और हृदय स्वास्थ्य के लिए ये लक्षण हो सकते हैं। देखो आजकल जो है ना, अचानक से ये बहुत कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमको ये बीमारी है, क्योंकि ये लक्षण हम समझ ही नहीं पाते हैं।
0: मेरे ना एक जान पहचान के भैया थे, तो वो अक्सर खाना खाते तो उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता था, तो बाद में पता चला कि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम है और उनका फिर ऑपरेशन बाईपास सर्जरी हुई थी। तो ना छोटी छोटी चीजों को करते हैं,
1: वही है ना कि हमको पता नहीं चलता, हम उस चीज को सोचते हैं कि ये शायद सामान्य सी बात है, आमतौर पर ऐसा होता है, ज्यादा पसीना आ रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके जो बाद में हम झेलते हैं कि ये कुछ गंभीर फिर समस्या बन जाती
0: और
1: है।
0: आजकल ना बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है,
1: क्योंकि हमारा जो खान पान है बहुत दूसरी तरह का हो गया है, और आजकल बच्चे जो है वो खेलने भी बाहर नहीं जाते हैं, ऊपर से इतनी सारी जंक फूड्स खाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो असर होना ही है, तो वो हमारे सेहत पे पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जैसे स्वस्थ रखने के लिए हमारी जीवन शैली में कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है।
1: जैसे कि हाँ, खान पान में सुधार, यानी जैसे आप नमक कम खाएं, और क्योंकि देखो नमक कम खाना ये सभी के लिए जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसको हृदय की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो वही नमक कम खाएं, बल्कि आप सामान्य तरीके से एक नमक खाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है।
0: और कच्चा नमक साथ में अक्सर आदत होती है ना साथ में लेने की, वो बहुत हानिकारक होता है, कच्चा नमक अवॉइड करना चाहिए।
1: हाँ, किसी को आदत होती है कि खाने में नमक सही भी रहेगा तभी भी वो नमक
0: थोड़ा
1: लेके
0: सा नमक
1: खाते
0: हैं। दो मिर्ची के साथ सलाद के साथ वो नमक लेते ही लेते हैं,
1: और वो जो ऊपरी नमक है वही हमारे सेहत पे ज्यादा असर डालता है,
0: बहुत हानिकारक होता है। और ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जैसे कि तली भुनी चीजें, इन सबसे तो बचना हमें चाहिए ही।
1: बिल्कुल, और आजकल वैसे भी हम सब लोग बहुत सारे जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो अपना ख्याल तो रखते ही हैं, फिर भी आप तली भुनी चीजें कम से कम खाएं।
0: और अक्सर ना खाने से पहले कोशिश करें कि एक बिग पोर्शन ऑफ आप ताजे फल, सब्जियां, अनाज, सैलेड जरूर खाएं। इससे आपको फाइबर मिलेगा जो हमारे सेहत के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: और इसके अलावा भी आपको कम से कम रोजाना 30 से 30 मिनट तक आप वॉक करें, योग करें या कोई भी हल्का फुल्का व्यायाम करें जो आपकी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, उसकी आदत डालें।
0: और धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि ये हृदय के लिए और हृदय की धमनियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
1: और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि तनाव जो है वो हमें, टेंशन जो आजकल बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि कुछ भी बात होता है, बिजनेस है, नौकरी है, हर चीज में टेंशन है, तो टेंशन तो हमारे शरीर को खराब करता ही है, उससे बचना चाहिए।
0: पता है एक रिसर्च में ये पाया गया ना कि जब भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो या बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ चुके हो ना, तो आप कुछ नहीं करें, बस आराम से चुपचाप बैठे और कुछ देर के लिए स्माइल करें, इससे भी ना बहुत असर पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। सिर्फ एक स्माइल हमारे जीवन में कितना कुछ बदल सकती है।
1: और समय समय पर हमें अपनी जांच करती रहनी चाहिए, चाहे बीपी है, शुगर है, अगर है तो वो आप नियमित

0: अपने अनुसार अपने घर पे भी जांच करें, तो उससे आप जान सकते हैं कि आपका खतरा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से
1: सलाह
0: परामर्श
1: लें।
0: लेना
1: और यदि
0: पड़ेगा।
1: आपको सीने में तेज दर्द, बाएं हाथ या जबड़े में दर्द या बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, तो बिना किसी देरी के फटाफट तुरंत अस्पताल जाएं और अपना जांच जरूर करवाएं।
0: देखो मोनिता, बातों बातों में हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे कार्यक्रम का वक्त जो है खत्म हो चला है। तो हम अब यही कहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, और गर्मी भी बहुत बढ़ रही है इस मौसम में भी अपना ख्याल आप जरूर रखें। और चलते चलते यही कहेंगे कि इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, पानी अधिक से अधिक पिए, बाहर निकल रहे हैं तो छतरी और पानी की बोतल जरूर अपने साथ रखें। और अभी वैसे भी बताया जा रहा है कि मौसम बदलने वाला है, तेज हवा चलने वाली है जैसा कि हमने बताया था पहले भी, तो इस समय में अपने घरों से ना निकलें या घरों के अंदर रहें, किसी सुरक्षित जगह पर रहें अगर आप बाहर जा रहे हैं और फंस गए हैं तो। इसी के साथ ही अब अपनी दोस्त रचना
1: और मोनिता को
0: दीजिए विदा। नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: इस संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में. और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का ये गीत, आवाज है किशोर कुमार की. गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है एसटी बर्मन ने. और इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतेक बिरक, मीका बिरक, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्लाह आसमा बेलदार. तो आइए सुनते हैं इन सबके पसंद का ये गीत.

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है गोलमाल और इस गीत को सुनना चाहे गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, अनुप्रिया, मंटू, मोनू, सोनू, बजरंग बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, देवेन चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

अगली फरमाइश करता है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, ये सब सुनना चाहते हैं घरौंदा फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है रूना लैला और भूपिंदर ने, गुलजार के बोल हैं, जयदेव का संगीत है।

0: शहर में
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है घर। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरका खाना से अफसाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, मोहम्मद अफसाल इब्राहिमी। इस गीत को सुनना चाहे ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रात और दिन फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और सुनना चाहते हैं राजा बाजार बिहार आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से उमानंद केसरी, धनानंद केसरी और विनोद केसरी।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन। मैं जमीन का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ एक और प्यारी सखी है लता।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए अपनी सखी लता का भी प्यार भरा नमस्कार और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, कुशल होंगी, मंगल होंगी और मौसम का ख्याल भी चली रही होगी।
0: हाँ, है ना, रख रही होंगी बिल्कुल। जरूरी भी है लता। आज हम पीछे अगर मुड़ करके देखते हैं ना तो लगता है कि उस समय का मौसम फिर से आ जाए, वो गर्मी हाँ। का मौसम, वो शाम में बारिश का होना, रात होते होते मौसम का ठंड हो जाना और फिर सर्दी भी, दिलकश सर्दी, जो कि सर्दी में हम देखते थे ना कि बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती थी और बरसात का मौसम भी इस तरह तबाही का भरा नहीं होता था।
1: हाँ देखो, आज जिस तरह से मौसम में बदलाव हुए हैं, मतलब कि गर्मी इतनी कि बर्दाश्त नहीं हो रही, बारिश भी तबाही के साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। क्यों?
0: जिम्मेदारी तो हमें लेनी ही होगी लता। हाँ। बहनों, हमारी धरती पर जो बोझ पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से हम महासागरों का भी तापमान बढ़ गया है, महासागरों का तापमान का बढ़ना मामूली प्रक्रिया नहीं है बहनों। जिस तरह से महासागर हमारी पृथ्वी के 70% से भी अधिक भाग को कवर करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन का स्रोत भी है, जो मानवता पृथ्वी पर हर जीव जो जीवन यापन का एक हम कहें ना कि आधार है। हाँ। तो बहनों हम यही कह सकते हैं कि ये जो तापमान का बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, पता है बहनों, महासागर पृथ्वी की लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है और दुनिया भर के 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कितनी बड़ी बात है। और इसके अलावा महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रोजगार का बहुत

0: बहुत बड़ा शोधपी है।
1: पता है लता, इन सभी बातों के अलावा महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही खास है। और बहनों, इन तमाम बातों के बावजूद हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा वातावरण जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से बदल रहा है, कारण प्रदूषण, और जिसकी वजह से महासागरों का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसका असर हम मौसम के रूप में देख रहे हैं कि मौसम किस तरह से तबाही के साथ आ रही है।
0: बिल्कुल, हम सभी को इसकी देखभाल करने की बहुत जरूरत है। इस दिवस का उद्देश्य, जो अभी हम महासागर दिवस मना रहे हैं, तो जनता को महासागर पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में भी सूचित करना चाहिए, इसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी में अपनी तरफ से भी पहल करनी चाहिए।
1: पहल तो बहुत जरूरी है लता, क्योंकि हम शुरुआत अपने घरों से करें, अपने आसपास के जगहों से करें, अपने नदी नालों से करें, तो हम यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तभी हम महासागर का जिस तरह से इसके तापमान में बदलाव आ रहा है और मौसम बदल रहे हैं, महासागर का जिस तरह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की हमें जरूरत है। बहनों, सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि किसी काम को करें, लेकिन ध्यान रहे कि पर्यावरण जो भी हमारे लिए जो भी जरूरी है, इसका भी खास ख्याल रहे, इन्हें भी बचा सकते हैं, तभी हम महासागरों का जो तापमान बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से हम मौसम को देख रहे कि ये रौद्र रूप ले रहे हैं, इससे बच सकते हैं। और अब हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है लता, हमें यहाँ पे जागरूकता यही नहीं है कि हम बोल करके चले जाएं, आप इस पर ध्यान दें, हमें भी ध्यान देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एक और बात की भी ध्यान देने की जरूरत है मैं जमीन, बहुत भी हमारी बातें, अब समय है कि हम अपनी बहनों को मनोरंजन की दुनिया में ले चले और उसका भी ख्याल हमें रखना है। तो आओ बहनों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: तो मैडम एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपकी अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, जहां हमें लेकर चलेंगी हम सबकी प्यारी सखी महजबी।
2: बहनों आज हम बातचीत के तहत सशक्त महिला सशक्त समाज के बारे में जानकारी देंगे कि भेंट वार्ता, इस पर हमारी आज की मेहमान है पूजा प्रसाद और इनसे बातचीत कर रही है हमारी रेडियो सखी लता।
3: किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में अपना योगदान देती हैं। सशक्त महिला सशक्त समाज विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और आज की हमारी खास मेहमान है इस विषय के लिए, जो हाल में ही दिल्ली में आयोजित मिसेस इंडिया ईस्ट जोन 2026 का खिताब जीत करके आई हैं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। पूजा जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद लता जी। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों और जो भी मुझे सुन रही हैं सबको मैं नमस्कार कहना चाहूंगी। जो हार मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।
3: जी पूजा जी, आप आज हमारी बहनों से रूबरू हैं और आपने हमारा गौरव जो है हमारे राज्य का प्रदान किया है, तो सबसे पहले तो जो आज का विषय है सशक्त महिला सशक्त समाज, इस पर हम तमाम महिलाएं खुलकर बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं।

0: करते हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है या क्यों जरूरी है।
1: लता जी, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की शिक्षा, समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सके। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं को सशक्त होने से परिवार, समाज और देश के समग्र विकास होता है। सशक्त महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान देकर समानता, न्याय और प्रगति को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ये महिला, मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण बहुत ही अनिवार्य है।
0: बहुत खूब मैम, एक सशक्त महिला समाज के विकास में किस प्रकार योगदान देती है?
1: लता जी, जैसा कि हम जानते हैं, पीढ़ियों से चला आ रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज 2026 में भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। आजादी के इतने साल बीत गए पर आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वो हमारे देश में गंभीर ही है। पर मैं कहना चाहूंगी कि एक सशक्त महिला जो होती है वो समाज के विकास में कई महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देती है। वो अपने परिवार को शिक्षित बनाती हैं, जिससे समाज का भविष्य बेहतर बनता है। आर्थिक विकास में योगदान देती हैं, जिससे वो अर्थव्यवस्था अपने परिवार की और देश की मजबूत करती हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं। सशक्त महिला की जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। और सामाजिक कुरीतियां जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव, जो हमारे समाज की बहुत ही कठोर समस्या है, उनके खिलाफ आवाज उठाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक शिक्षित महिला और एक सशक्त महिला ना केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति और विकास की आधारशिला बनती हैं।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और केवल महिलाएं शिक्षित होती हैं तो केवल अपने ही परिवार नहीं, बल्कि वो समाज की जो है वो पूरे समाज के लिए मिसाल बन जाती है। मैम, आपसे अगले सवाल में जानना चाहेंगे कि आज के समय में महिलाओं के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
1: मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं के सामने अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम आए दिन अपने अखबारों में और आसपास में ये देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो जितनी पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, उनको हर तरह से असुरक्षित महसूस कराता है हमारा समाज। अगर पढ़ जाए तो वो कहते हैं कि अरे बहुत पढ़ी लिखी है, ये हमारे संस्कारों को भूल करके आगे बढ़ रही हैं। और अगर नहीं पढ़ी हो तो उन्हें हर तरह से दबाया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चुनौती तो घर से ही आती है। बचपन से एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि आपके क्या अधिकार है, क्या नहीं है। उसी समय एक भेदभाव शुरू हो जाती है जो लड़के और लड़कियों के बीच में होना शुरू हो जाता है, और हमें उसी तरह से बड़ा किया जाता है। और इस मानसिकता की वजह से हम महिलाएं शायद बहुत पीछे रह जाती हैं। वेतन में असमानता मिलता है, कार्य और परिवार के बीच में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर होती है। सामाजिक रूढ़ियां जैसे पारंपरिक सोच और रूढ़िवादी मान्यताएं जो होती है वो महिलाओं की स्वतंत्रता को कुछ हद तक छीनती हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घरेलू हिंसा हो या दहेज उत्पीड़न का मामला हो, आप देख सकते हैं हर दिन कहीं ना कहीं महिलाएं किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का शिकार है। शिक्षा और रोजगार में भी असमानता होती है। कई जगह पे आप देखेंगे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल रही है, लड़कों को भेजा जा रहा है स्कूल, लड़कियों को नहीं भेजा जा रहा है। और रोजगार में भी लड़कियों को या औरतों को ये बोल के नहीं दिया जाता है रोजगार कि आप इसके काबिल नहीं है, क्योंकि काबिल तो परिवार शुरू से ही बनाना शुरू कर देता है। पर ये समाज की मानसिकता है कि आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे औरतों को कम रखा जाता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो आज भी महिलाएं जिनसे गुजर रही हैं, और जिसको मुझे लगता है हम सबको मिलके इस सारी कुरीतियों को दूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी सबने को दी। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या लगता है?
1: ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है ना लता जी, लड़कियों को खास करके बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई का जो स्तर है आप देखते हैं हर जगह स्कूल है।

0: बाधाएं जिनके जिंदगी में, उन्हें हम कुछ कौशल सिखा सकते हैं जैसे कढ़ाई बुनाई इस तरह की चीजें, या खेत में काम करना भी महिलाएं करती हैं, पर उसके बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं ताकि जिस जिस भी रूप में जहाँ पे भी वो काम कर रही हैं उसमें वो बेहतरीन करके दिखाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है मैम आपका। मैम, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए समाज की क्या जिम्मेदारी है?
0: मैम ये कहना चाहूंगी कि हम अगर ये सोचे कि सिर्फ महिलाएं सशक्त हैं हो जाए और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा तो हमारा सोच कुछ हद तक गलत है। क्योंकि अगर समाज है तो महिलाओं के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो एक किसी भी महिला के आसपास की महिला हो या गांव की महिला हो, उन सबको इस तरह का माहौल दे कि वो अपने आप को प्रगति के राह पे चला सके, वैसा मौका दे, उस अधिकार को उनको बताया जाए। बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में जिन्हें अधिकार पता ही नहीं है उनके, तो उन अधिकारों के बारे में जब पता ही नहीं है तो वो उस प्रगति के रास्ते में चलेंगी कैसे। तो मेरा सोच ये है कि आप अगर अपने आसपास किसी भी महिला को, चाहे वो एक महिला ही क्यों ना हो, अगर आप उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं, उनको थोड़ा सा सहयोग करें और उन्हें जानकारी दे, उन्हें शिक्षित करें, और इस तरह से अगर आप अपना दायित्व समाज के प्रति निभाते हैं तो शायद एक समाज, हमारे देश का समाज जो पिछड़ा है वो बहुत प्रगति करेगा और अपना छाप जो है पूरे विश्व में छोड़ जाएगा।
1: जी बिल्कुल मैम, क्या केवल महिलाओं का सशक्त होना पर्याप्त है या समाज की सोच में भी बदलाव की जरूरत है?
0: लता जी, मुझे लगता है केवल महिलाओं का सशक्त होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव भी उतनी ही आवश्यक है। यदि महिलाओं का शिक्षा रोजगार और अधिकार मिल जाए लेकिन समाज में भेदभाव रूढ़िवादी सोच और असमानता बनी रहे तो सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। समाज को महिलाओं को समान अवसर सम्मान और स्वतंत्रता देने की मानसिकता अपनानी होगी। जब महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उनकी क्षमताओं पर विश्वास किया जाएगा तभी वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण संभव होगा। महिला सशक्तिकरण और समाज की सकारात्मक सोच दोनों मिलकर ही एक समान सुरक्षित और विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: ये तो है बिल्कुल, बहुत खूब मैम। मैम आप एक सशक्त महिला हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की, अपने मुकाम तक पहुंची, आप अपने बारे में हमारी बहनों को बताएं।
0: लता जी, मैं भी एक बहुत ही आम महिला हूँ, बहुत ही मध्यम परिवार से आती हूँ और बचपन से एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको बहुत दिल से करना है। पर मेरे पिताजी जो थे उन्होंने हम सारे बहनों को ये सिखाया कि आप बेटियां हैं पर मैं आपको बेटों से भी बढ़कर पाल रहा हूँ, आप अपने विचार से और आप अपने निर्णय लेने के लिए शुरू से आजाद है। तो उससे क्या हुआ, हमारी मानसिकता ऐसी बनी कि जो भी हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं नौकरी करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम अपना डिसीजन खुद लेते थे, अपने निर्णय पे आगे बढ़ते थे। कभी कभी फेलियर भी होता है कि हाँ हम आगे बढ़े और उसमें कामयाबी नहीं मिली,
1: बिल्कुल,
0: पर एक सीख मिली हर बार कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना सही नहीं रहा। और इस तरह से आज मैं एक सरकारी नौकरी करने के अलावा मैं अपने आपको कह सकती हूँ कि पैशन जो था ब्यूटी पेजेंट पे जाने का, उसको मैंने पूरा किया और ना सिर्फ पूरा किया उसमें भी मैंने दिल लगाया, बहुत मेहनत की और आज मैं कह सकती हूँ कि झारखंड का नाम मैंने रोशन किया। मैं झारखंड की पहली महिला बनी जो मिसेज इंडिया इस जोन 2026 का खिताब लेकर के आई हूँ और इस बात पे मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ये खिताब मुझे मिला। इससे मेरे परिवार, मेरे राज्य का नाम रोशन हुआ। और मैं हर महिला से कहना चाहूंगी कि अगर आपने सपने देखे हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं, जो भी स्थिति में आप हैं, अगर आपने कभी भी सपना देखा है तो आप आगे बढ़िए और अपने सपने पे भी काम कीजिए। जीवन का मतलब सिर्फ काटना नहीं होता है, जीवन का मतलब अपने सपनों को जीना भी होता है। तो आगे बढ़िए और अगर आप हिम्मत करेंगी तो बहुत सारा कमाल हो चुका है इस दुनिया में, आप भी कमाल करके दिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब मैम, बहुत ही खूबसूरत जवाब। और आपने चलते चलते हमारी बहनों को आपने ये संदेश भी दिया कि कमाल होते रहे हैं और ये कमाल हम महिलाएं भी दिखा सकती।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैम पूजा प्रसाद मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी बातें साझा की, अपने अनुभव साझा किए और हमारी

0: कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। मैं
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी ये बातचीत सशक्त महिला सशक्त समाज। हमारी आज की मेहमान थी पूजा प्रसाद और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी लता। लता
3: तो मैं भी आज हमने महासागर की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की और अब देखो ना कैसे मौसम भी करवटे बदल रहा है।
2: बहुत ही सुहाना मौसम है।
3: हाँ, तो क्यों ना अब थोड़ा मौसम का भी आनंद ले लिया जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: बहनों फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। हम आपको आज जानकारी के तहत देंगे कि महासागर के जलीय जंतुओं का अद्भुत संसार। महासागर हमारे ग्रह का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो विशाल और रहस्यमयी जलीय जंतुओं से भरा हुआ है और उनका घर भी है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही अनोखी भी है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: रहस्यमयी दुनिया में नीली वेल, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, और इसी महासागर में पाई जाती है एक और जीव जो सूक्ष्म से लेकर विशाल कय और सभी एक चक्र से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ हाँ, और बहनों जितना महासागर पर रिसर्च किया जाता है उतनी ही अद्भुत बातों को जानने का मौका मिलता है। और यही है कि जब हम एक सपने के तहत जब हम एक ध्यान करते हैं कि महासागरों के अंदर में क्या होता है, ये छोटी मछलियां बड़ी मछलियां कितना खूबसूरत लगता है।

0: और बात बता दूं
1: हाँ
0: कि मरियाना ट्रेंच जैसे गहरे अंधेरे इलाके में रहने वाली एंगल फिश
1: हाँ
0: जिसे हम जीवी कहते हैं, वो
1: हाँ
0: अपने
1: हाँ
0: शरीर से खुद रोशनी पैदा करती है, यानी
1: क्या
0: कि
1: बात है,
0: उस अंधेरे गहराई में कुदरत ने उसे खुद इसकी रोशनी दी है, जिसकी वजह से वो अंदर के जो दुनिया को वो देखती है, खाती है, पीती है, जीवन जीती है।
1: और सबसे अजीब बात यह है कि आज भी इतनी तरक्की के बावजूद 80% से अधिक हिस्सा हमसे अछूता है, जिसे खोजा नहीं जा सकता। मैंने इतने कम समय में हम सब महासागर की दुनिया की पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन यह जरूर है कि इसके बारे में हम आगे जरूर बातें करेंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने हमें इशारा किया है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। तो अपनी सखी लता और
0: महजबीन को दे इजाजत,
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फना फिल्म का ये गीत। आवाज है शान और कैलाश खेर की। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है और जतिन ललित ने संगीत से सजाया।

0: वास्तव में आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में एक लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: संदेश के बाद फिर से स्वागत है आप सबका फिल्म संगीत में. अगला गीत आइए अब सुनवाते हैं आपको शफकत अमानत अली, शंकर महादेवन और कोलारिसो मोंटेरियो की आवाज़ों में. फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना. जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजा है शंकर एहसान लॉय ने.

आइए अब सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, वसुंधरा दास की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

अब आइए सुनते हैं अरमान फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, शंकर एहसान लोई ने संगीत दिया है और आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज जमशेदपुर दौरा। बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जल जंगल जमीन के संघर्ष को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में किया जाएगा विकसित। लैंड सर्वे पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त। भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। झारखंड समेत पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी और विरोध फितशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। उन्होंने जनजातीय समाज को संगठित कर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की रक्षा का पाठ पढ़ाया। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन से ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। अमित शाह ने उन्हें आदिवासी गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि जल जंगल जमीन और धर्मांतरण के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा प्रेरित करता रहेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।
2: एक अवसर हमें मिला था क्योंकि झारखंड दागदार रहा है, कलंक हमारे पे रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं इस प्रकार के चीजें देखने को मिलती है और इस अवसर को पुनः उन्होंने नाथवानी के माध्यम से वो दागदार बनाने का फिर प्रयास किया है। ये दुखद स्थिति है, इससे ज्यादा शर्मनाक बातें नहीं होती। राजनीतिक संस्कार की बातें, उन्होंने उस मर्यादा को उल्लंघन किया है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य

0: जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य सरकार ग्रामीण चिकित्सा को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करेगी। एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा के अनुसार पहले चरण में 20 केंद्रों को मॉडल यूनिट बनाकर वहां दवाओं, डॉक्टरों और उपकरणों की उपलब्धता को 80% तक बढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश M.S. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि सभी जिलों में लैंड सर्वे कब तक पूरा होगा। अदालत ने 2025 में आधुनिक तकनीक से 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश के बावजूद प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के मसनोडी के प्राकृतिक आम अपनी खास मिठास के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां बिना किसी केमिकल के पेड़ पर पके शुद्ध आमों की भारी डिमांड है। इन स्वादिष्ट आमों को खरीदने के लिए रांची, पटना और दिल्ली सहित 7 समंदर पार अमेरिका तक से ऑर्डर मिल रहे हैं।
2: यहाँ खासियत इसका स्वाद है, मालदा है, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का मालदा का टेस्ट कुछ अलग है, जिसके चलते इस सब जगह फेमस है। पटना, दिल्ली, रांची, बम्बई सब तो है, लेकिन पिछले साल 3 पेटी आम अमेरिका भी गया। शुरू में 5 साल तक सेवा बहुत है, उसके बाद समय पर बीच में पानी दे दिए कभी, और दवा छिड़कते हैं जब आम का मंजर उंजर निकलने का समय होता है ना। इस बार आम थोड़ा कम है, अगले साल उम्मीद है ज्यादा होगी।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 144 अंक बढ़कर 73,668 पर, जबकि निफ्टी 60 अंक बढ़कर 23,183 पर कारोबार कर रहा था। जापान अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर झारखंड की 6 खिलाड़ी आज रांची लौटी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक मांदर की थाप के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने हेतु प्रेरित करेगा।
3: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जापान गए, वहाँ खेले, अपना अच्छा से प्रदर्शन किए। जितने स्टाफ मैन थे, सारे लोग का हम पर सपोर्ट था। हम वहाँ पे अच्छे खेले, बट हमारा तो लक्ष्य था गोल्ड लेकर आना, बट सेमीफाइनल में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से हमने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में चतरा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। देश भर के 900 खिलाड़ियों के बीच चतरा के

कोर्ट सख्त भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीरे में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं शोभा गोटू। इनसे आज आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं अंधेरिया है रात।

उपशास्त्रीय संगीत में आइए अब सुनते हैं मंच खमाज में ठुमरी। कलाकार हैं शोभा गोटू और बोल हैं अब कैसे धीर।

अभी आप सुन रहे थे अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार थी शोभा गोटू। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं चंद गजलें। पहली गजल सुनते हैं गुलाम अली की गाई हुई। इस गजल को लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है गुलाम अली का।

अगली गजल आइए अब सुनते हैं, मेहंदी हसन की गाई। गजलकार है मंसूर अनवर और संगीत है गुलाम कादिर खान का।

सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को

0: फीट की ऊंचाई पर निर्मित सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आयुक्त तेंतुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब इसराइल बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है।

0: फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीरे वेब 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Medicina!
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है जय भारती कार्यक्रम में, और हमारे फौजी भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, जिनमें हम उनसे बातचीत भी करते हैं और उन्हें फिल्म संगीत भी सुनवाते हैं। तो श्रोताओं, जिस तरह से फौजी भाई देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करने से भी नहीं डरते हैं, उसी तरह से कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। और उनमें से एक है महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं और उन सबके हौसलों की हम दाद भी देते

लेकर आदिवासियों का संघर्ष सदियों पुराना रहा है और आज भी चल रहा है, और ऐसे ही विद्रोह के जनक थे बिरसा मुंडा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का आज ही के दिन साल 1900 में निधन हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया था। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने और आधुनिक हथियारों की उपलब्धता ना होने के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। ये मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए उनका संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया और फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान।

आदिवासी जंगलों को अपनी जननी मानते हैं और इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स ने इन जंगलों को हथियाने की कोशिशें शुरू की तो आदिवासियों में असंतोष पनपने लगा और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी कर्ज के जाल में फंसने लगे, उनकी ज़मीनें भी उनके हाथों से जाने लगी। अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर लिया, खेती करने के तरीकों पर भी बंदिशें लगाई और इस वजह से आदिवासियों का धैर्य जवाब देने लगा। तभी उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में अपना नायक मिला। 1895 तक बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच बड़ा नाम बन गए थे, लोग उन्हें धरती बाबा नाम से पुकारने लगे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को दमनकारी शक्तियों के खिलाफ संगठित किया, अंग्रेजों और आदिवासियों में हिंसक झड़पें भी होने लगी।

1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बिरसा की मृत्यु है जैसे हो गई। बिरसा मुंडा मरे नहीं अपितु अमर हो गए। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं। सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की

0: भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है।
1: लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
0: कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर के चैंबर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन कर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा के निर्देश अनुसार पहले चरण में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाया जाएगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड थाना अंतर्गत तेतुल बांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
2: 3 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों जो है धरवाडी थाना कर्माटा जामदारा के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा मोडस ये था कि गूगल में फर्जी आईडी बना के कस्टमर केयर आईडी बना के उन्होंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कराता था और उनसे जो है ठगी की कार्रवाई ये लोग कर रहे थे। इनके पास से जो है कुल 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुआ है।
0: झारखंड की युवा पहलवान प्रियंका महतो ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु प्रियंका के इस प्रदर्शन पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ, खेल विभाग और JSSPS ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है। क्रिकेट। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 को लेकर आज शाम 5 बजे रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में लीग के आयोजन, तैयारियों, टीमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच, चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
0: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है
2: जी।
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में

0: कौन सी चाय परोसी जाती है?
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गए।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहां जाती बेचारी। अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है।
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
2: और हाय।
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।

0: आपके पास कहिए क्या संवाद है?
1: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
0: बड़ी बहू,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
1: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
3: अरे भैया, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
1: अच्छा,
3: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
1: तो कितना समय और लगेगा?
3: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।

0: माँ देखो हर गोविंद काका आए हैं।
1: पाए लागू माँ जी।
2: जीते रहो हर गोविंद बेटा, क्या समाचार है?
1: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
2: मेरी बेटी का कोई संवाद?
1: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
2: हाँ?
1: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
2: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
1: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
2: सो तो है।
1: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
2: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
2: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
2: अरे हर गोविंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
3: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
1: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी
2: बड़ी माँ।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration, and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity, and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive, and empowered विकसित भारत।
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees, as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom, and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis

0: is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across shifting sands. All living things need water in order to survive. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can, therefore, retain the water they drink for long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। आज बहुत सारी हस्तियों की पुण्यतिथि है और जन्म दिवस भी है, तो सत्यन बोस की भी आज पुण्यतिथि है। 9 जून 1993 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ बंगाली फिल्म का भी निर्देशन किया। उनकी मुख्य फिल्में थी रात और दिन, चलती का नाम, गाड़ी, दोस्ती, जागृति। जागृति फिल्म ने 1956 में फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था और दोस्ती फिल्म ने भी 1964 में ये अवार्ड जीता था। तो आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म का ही ये गीत।
5: सुख हो या सुख जब सदा संग

असद भोपाली जो कि एक मशहूर गीतकार हैं, उनका निधन भी 9 जून 1990 को ही हुआ था। और असद अपनी शायरी के चलते धीरे धीरे असद भोपाली के नाम से मशहूर हो गए। 28 साल की उम्र में वे गीतकार बनने के लिए मुंबई आए थे। तो आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा हुआ गीत पारस मनी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

राज खोसला जो कि भारतीय सिनेमा जगत में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में जिन्हें याद किया जाता है, उनके अपने उत्कृष्ट निर्देशन से लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। राज खोसला का निधन भी 9 जून 2017 को हुआ था। उनकी मुख्य फिल्में हैं दोस्ताना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दूर आस्ते, मेरा गांव मेरा देश, वे कौन थी, मेरा साया जैसी दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल में अमिट छाप छोड़ जाती है।

अभी आपने सुना राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म मेरा साया का ये गीत। आशा भोसले की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने संगीत दिया था। अब बात करते हैं उनकी, जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो 9 जून 1912 को वसंत देसाई, जो कि भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका जन्म हुआ था। संगीत लहरियों से फिल्मी दुनिया को सजाने संवारने वाले महान संगीतकार वसंत देसाई के संगीतबद्ध गीतों की रोशनी फिल्म जगत की सतरंगी दुनिया को हमेशा रोशन करती रही है। फिल्म दो आंखें बारह हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम वसंत देसाई द्वारा ही संगीतबद्ध किया गया था। तो उनकी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया था, उनमें से एक फिल्म थी गूंज उठी सहनाई। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। भारत व्यास ने इस गीत को लिखा है और वसंत देसाई का संगीत है।

और 9 जून 1975 को भारतीय अभिनेत्री अमीषा पटेल का भी जन्म हुआ था। पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था और अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहो ना प्यार है में अपनी अभिनय की शुरुआत की थी और ये फिल्म काफ़ी हिट भी हुई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

और भारतीय अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म भी 9 जून 1985 को हुआ था। एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर को शुरू करने से पहले सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली के साथ एक सहायक के रूप में काम किया था और उसके बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। तो आपको सुनाते हैं उनकी फिल्मों में से एक फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत। गायक कलाकार हैं हर्षदीप कौर, शबाब सबरी, विनीत सिंह, अन्वेषणा, इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, 4 बजे हैं, सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्मटांड थाना अंतर्गत तेतुलबांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना परिसर में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने आमजनों की समस्याएं सुनी और निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। झारखंड की युवा

पहलवान प्रियंका महतो ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम किया है। और श्रीलंका के दम्बुला में चल रहे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन एवं प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी का है और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभुशरण का है।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। 48 टीमें 39 दिन तक 104 मैच खेलेंगी। 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। कितनी टीमें हैं, कौन टीमें मजबूत हैं, इस पे चर्चा होगी। इसके अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20 टीम भारतीय टीम की घोषणा हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी में हम बात करेंगे आर प्रज्ञा नंदा की, और इसके अलावा फ्रेंच ओपन जीतने वाली रूस की नई खिलाड़ी एंड्रीवा की। खास खास में और भी कुछ बातें होंगी और खेल खबरें तो होंगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल प्रशंसकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा। कुल 39 दिनों तक चलने वाले खेल की दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे। इस बार दोस्तों सभी की नजरें फुटबॉल जगत के दो महानायकों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टिकी है। ये दोनों दिग्गज अपना रिकॉर्ड 6th वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, जहां डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान मेसी खिताब को बरकरार रख इतिहास रचना चाहेंगे। वहीं पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो अपने देश को पहली बार विश्व विजेता बनाने के इरादे से उतरेंगे। खिताब की रेस में अन्य स्टार खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 2024 की यूरो चैंपियन स्पेन अपने वंडर बॉय लामिने यमाल के दम पर ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही हैं। वहीं पिछली बार फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले किलियन एम्बापे की फ्रांस, हैरी केन की इंग्लैंड, विनीसियस जूनियर की ब्राजील और 4 बार की चैंपियन जर्मनी को भी कम नहीं आंका जा सकता। इस बार केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान के रूप में 4 टीमें वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही हैं। दूसरी ओर कई देश लंबे अंतराल के बाद मेगा टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। इराक 40 साल बाद इस टूर्नामेंट में लौट रहा है, जबकि स्कॉटलैंड 28 साल बाद अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। अब कुछ खास बातें दोस्तों, कौन सी टीमें मजबूत हैं, किन का दावा मजबूत है, इस पर थोड़ी चर्चा। वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में पहली बार 3 देश एक साथ मेजबानी कर रहे हैं। मैक्सिको पहला देश है जहां तीसरी बार वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। वहां 1970 और 1986 में भी वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन हुआ था। अमेरिका को दूसरी बार मेजबानी मिली है। यहां 1994 में वर्ल्ड कप हो चुका है, जबकि कनाडा पहली बार मेजबान है। इस बार वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। सभी टीमों को 4-4 के 12 ग्रुपों में बांटा गया है। एक ग्रुप की टीमें आपस में एक एक मैच खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमों के साथ साथ तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 बेस्ट टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। इसके बाद 32 टीमों के बीच

नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैच होंगे। सेरेमनी की अगर हम बात करें तो तीनों मेजबान देशों में अलग अलग उद्घाटन समारोह हो रहे हैं। मैक्सिको में जे बॉल्बिन, एलेजांद्रो फर्नांडिस जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे। कनाडा में नोरा फतेही के अलावा माइकल बबले, एलेसिया कारा जैसे सितारे जलवा बिखेरेंगे। अमेरिका में केटी पेरी, फ्यूचर लिसा जैसे ग्लोबल स्टार्स परफॉर्म करेंगे। फाइनल के हाफ टाइम शो को लेकर भी काफ़ी उत्साह है दर्शकों में। कोल्ड प्ले के दिग्गज क्रिस मार्टिन द्वारा तैयार किए गए शो में शकीरा, मैडोना और बीटीएस समा बांधेंगे। ये जो महा आयोजन हो रहा है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे इस बार 32 के बजाय 48 टीमें खेल रही हैं। तीन देश मिलकर मेजबानी कर रहे हैं। 8 मैच जीतने होंगे खिताब के लिए 7 की जगह पे। राउंड ऑफ 32 पहली बार होगा। मैचों के बीच खिलाड़ियों के इंटरव्यू होंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा। फाइनल में भव्य हाफ शो का आयोजन होगा। 110 करोड़ तक पहुंची है टिकट की कीमत। सबसे महंगा टिकट 110 करोड़ रुपए का है, जबकि सबसे सस्ता टिकट 6000 का है। फाइनल के स्टैंडर्ड टिकट की कीमत करीब 22 करोड़ रुपया बताई जा रही है। गर्मी का भी असर होगा, जहां आयोजन हो रहा है वहां गर्मी का भी असर होगा। फुटबॉल के पारंपरिक रूप से 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन वर्ल्ड कप में मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। वेसन गर्मी की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा, और यह ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट में और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यह 3-3 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य होगा। मैनेजर इस ब्रेक का इस्तेमाल खिलाड़ियों को फिर से संगठित करने, डिफेंसिव रणनीति में बदलाव करने और मोमेंटम बदलने के लिए कर सकते हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को टच लाइन के पार जाने की अनुमति नहीं होगी। कोच मैदान पर ही टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। इस नए हाइड्रेशन नियम का टूर्नामेंट के कुल समय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वर्ल्ड कप में कुल 104 मैच खेले जा रहे हैं। हर मैच में 3-3 मिनट के दो अनिवार्य ब्रेक होंगे और पूरे टूर्नामेंट में कुल 624 अतिरिक्त मिनट जुड़ेंगे। यह समय 10.4 घंटे के बराबर होगा, यानी अतिरिक्त समय में लगभग 7 पूरे फुटबॉल मैच खेले जा सकते हैं। ब्रॉडकास्टर को इस अनिवार्य रुकावट के दौरान मैदान पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दे दी गई है। विज्ञापन तभी शुरू हो सकेंगे जब रेफरी के सीटी बजाने के 20 सेकंड बीत चुके होंगे। वहीं खेल दो शुरू होने के कम 30 सेकंड के पहले ब्रॉडकास्टर को मैदान का लाइव एक्शन दिखाना होगा। 20 साल बाद भी वर्ल्ड कप में ये 4 सितारे जो हैं वो दिखाई देंगे। टूर्नामेंट में 1248 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 4 ऐसे हैं जो 20 साल पहले जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। साल 2006 में हुए वर्ल्ड कप में 736 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उनमें से सिर्फ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैक्सिको के गोइलेमो ओचोवा और क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच इस बार भी नजर आएंगे। 48 टीमों को 12 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक की टीमें हैं। ग्रुप बी में कनाडा, बोस्निया हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड की टीमें हैं। ब्राजील, मोरक्को, हेती और स्कॉटलैंड की टीमें ग्रुप सी में हैं। अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की टीम ग्रुप डी में है। ग्रुप ई में जर्मनी, कुराकाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर है। ग्रुप एफ में नीदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया की टीमें हैं। ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र, ईरान और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। ग्रुप एच में स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब और उरुग्वे की टीम है। ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे की टीम है। इराक की टीम 40 साल बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन की टीम है। ग्रुप के में पुर्तगाल, कांगो, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया की टीम है। ग्रुप एल में इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना और पनामा की टीमें हैं। वर्ल्ड कप के 104 मुकाबले 3 देशों के 16 स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में आयोजन होगा। ओपनिंग मुकाबला मैक्सिको सिटी के

स्टेडियम में होगा, जबकि फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। कनाडा के बैंकुवर से अमेरिका मियामी के बीच करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी इसे भौगोलिक रूप से सबसे फैला हुआ वर्ल्ड कप बनाती है। इसके उलट 2022 का कतर वर्ल्ड कप सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्मेट था, जहां दो स्टेडियम के बीच सबसे ज्यादा दूरी 55 किलोमीटर की थी। इससे पहले 1994 में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड कप दूसरा सबसे ज्यादा फैला हुआ वर्ल्ड कप माना जाता था, जहां पूर्वी और पश्चिमी तट के शहरों के बीच 4,000 किलोमीटर का फासला था। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला फुटबॉल का यह महाकुंभ 11 जून को शुरू होगा, 19 जुलाई को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा, फाइनल मैच खेला जाएगा। अब देखना है कि कौन सी टीमें किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। हमने आपको बताया दोस्तों कि फुटबॉल की रोशनी में जगमग होंगे 3 देशों के 16 शहर, यानी अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के 16 स्टेडियमों में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 45 से 94,000 तक दर्शक क्षमता होगी, सभी में नेचुरल घास। मैक्सिको में ओपनिंग मुकाबला और अमेरिका में फाइनल खेला जाएगा। कुछ स्टेडियम की हम चर्चा कर लें, जैसे मेटलाइफ स्टेडियम, ये दो फीफा फाइनल का मेजबान रह चुका है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इस स्टेडियम की क्षमता 82,500 है और इस मैदान पर पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था और अब फिर एक बार 19 जुलाई को यहां फाइनल खेला जाएगा। और आम तौर पर यहां सिंथेटिक टर्फ होती है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के लिए इसे विशेष तकनीक से प्राकृतिक घास में बदला गया है। वीसी प्लेस, 2010 में विंटर ओलंपिक का आयोजन यहाँ हो चुका है, ये कनाडा के वैंकुवर में है। 54,000 दर्शक इसमें दुनिया की सबसे बड़ी केबल सपोर्टेड रिएक्टेबल रूप में ये बना हुआ है ये स्टेडियम। यहाँ साल 2015 के महिला फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जा चुका है और साल 2010 में विंटर ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यहीं हुई थी। मर्सिडीज बेंज स्टेडियम यह अटलांटा में है, 71,000 दर्शकों की क्षमता है। इसकी घूमने वाली छत रोमन पैथियान से प्रेरित है। जब इसकी 8 विशाल पंखुड़ियाँ खुलती हैं और बंद होती हैं तो यह कैमरे के शटर जैसा दिखाई देता है। यहाँ टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल होगा। यहाँ खाने पीने की चीज़ों की कीमतें सामान्य बाजार जैसी होती हैं। AT&T स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इसमें समा सकता है। ये डलास अमेरिका में है, 94,000 दर्शकों की क्षमता है और इस लिहाज से यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसके भीतर 2.7 मिलियन स्क्वायर मीटर की जगह इतनी विशाल है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अपने बेस सहित इसकी बंद छत के अंदर समा सकता है। एरोज हेड या शोर का गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है, कंसास सिटी में है, क्षमता 76,000 दर्शक है। स्टेडियम के नाम दुनिया के सबसे शोरगुल वाले आउटडोर स्टेडियम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है नाम। 2014 में यहाँ 142.2 डेसिबल शोर रिकॉर्ड किया गया था, जो जेट विमान के टेक ऑफ की आवाज़ के बराबर माना जाता है। यह अमेरिका में सबसे पुराना स्टेडियम है, इसे 1972 में बनाया गया था। सिएटल में एक स्टेडियम है जो घोड़े की नाल के जैसा है। वाशिंगटन स्टेट के इस स्टेडियम का आकार एक हॉर्सू यानी घोड़े की नाल के जैसा है। यहाँ की बनावट ऐसी है कि दर्शकों का शोर मैदान पर गूंजता है, जो विरोधी टीम पर दबाव बनाता है, और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शकों की आवाज़ वापस मैदान में गूंजती रहती है। सैन फ्रांसिस्को में एक स्टेडियम है, लेवाइस स्टेडियम, ये ग्रीन स्टेडियम का इसको दर्जा मिला हुआ है। 71,000 दर्शकों की क्षमता है। सिलिकॉन वैली के केंद्र में स्थित होने के कारण यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल और ग्रीन स्टेडियम के तर्ज पर इसे डिजाइन किया गया है। यह अमेरिका का पहला बड़ा खेल स्टेडियम है जिसने निर्माण के दौरान ही गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। तो बहुत तरह से तैयारी की गई है। एक कुछ स्टेडियम है जहां इसके पहले भी आयोजन हो चुका है। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा के दूसरे पार्ट में
हम बातचीत करने जा रहे हैं आयरलैंड और इंग्लैंड।

दौरे के लिए T20 भारतीय टीम की घोषणा की गई है। T20 क्रिकेट टीम में नए युग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्य कुमार को उनके गिरते फॉर्म और भविष्य की योजना के कारण टीम से ड्रॉप कर दिया गया। भारतीय टीम 2 T20 के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी और इसके बाद 1 से 11 जुलाई के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। आयरलैंड के साथ भारत का मुकाबला 26 और 28 जून को होगा। इन दौरों के लिए घोषित टीम में बिहार के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। सूर्यवंशी देश के क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम में तिलक वर्मा को नया उपकप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पहली बार मौका मिला है। बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। हालांकि बुमराह सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में वापसी करेंगे। चोट के बाद हर्षित राणा की टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है और IPL में बतौर कप्तान 56% मैच इन्होंने जीते हैं। धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शुमार हो चुके हैं। 2024 में कोलकाता को इन्होंने चैंपियन बनाया था। 2025 में पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। अब सूर्या की अगर हम बात करें तो IPL 19 में 21 के औसत से 13 मैचों में इन्होंने मात्र 270 रन बनाए। अगले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए थोड़ा एज फैक्टर भी है और 2025 में 168 का स्ट्राइक रेट था जो लुढ़क कर 148 पहुंच गया। वैभव की अगर हम बात करें तो अकेले दम पर ही इन्होंने राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचाया और यही वजह है कि इन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला। IPL में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए इन्होंने। ऑरेंज कैप मिला। 2028 के T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और ये सेलेक्टर्स की नज़र में वर्ल्ड कप के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। अब बुमराह की बात करें तो लगातार 9 टेस्ट खेलने हैं जो WTC फाइनल के लिए अहम है, इसलिए इनको आराम दिया गया है। सेलेक्टर आगरकर ने कहा कि T20 क्रिकेट बहुत होती है, उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार और फिट रखना है उनको। चयनकर्ता नीतीश रेड्डी जैसे युवाओं को मौका दे रहे हैं। ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में शिवम दुबे को भी मौका मिला है। वाशिंगटन रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर को आजमाने के लिए उन्हें आराम दिया गया और टेस्ट वनडे और IPL के लंबे सीजन को देखते हुए उनका वर्कलोड मैनेज किया गया और कुलदीप को रखा गया। T20 टीम में श्रेयस और संजू ही 30 के ऊपर हैं। टीम की औसत उम्र 26 से 27 साल के बीच है। इसका मतलब है कि युवा खिलाड़ियों को आजमाने की कोशिश की गई है, युवा टीम बनाई गई है। अब देखना है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है। और दोस्तों अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पर्सनालिटी में आज हम 2 खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे, एक R. प्रज्ञानंदा की और दूसरा फ्रेंच ओपन जीतने वाली खिलाड़ी एंड्रीवा की। पर्सनालिटी में दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे 20 साल के खिलाड़ी R. प्रज्ञानंदा की, जिन्होंने जीता है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट और ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय चेस के युवा सितारे R. प्रज्ञानंदा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उन्होंने प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतकर न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया बल्कि वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार और 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन मैग्नस कार्लसन को उन्हीं के घरेलू टूर्नामेंट में हराया। उन्होंने एक ही क्लासिकल टूर्नामेंट में उन्हें 2 बार मात देने का कारनामा भी कर दिखाया। 20 साल के प्रज्ञानंदा की यह उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2008 के बाद से किसी भी खिलाड़ी ने कार्लसन को एक ही क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में 2 बार नहीं हराया था। उनसे केवल 4 खिलाड़ी वेसेलिन टोपालो, विश्वनाथन आनंद

के डॉक्टर मेहमत मास सेवन ने भविष्यवाणी भी कर दी कि प्रागी के जीतने की संभावना मात्र 0.7% है, लेकिन अंतिम चार राउंड में उन्होंने अलीरेजा फिरोजा, कार्लसन, गुकेस और विंसेंट केमार के खिलाफ जीत दर्ज की और अंतिम दिन वेस्ले को पछाड़कर खिताब अपने नाम कर लिया। अगर हम टर्निंग पॉइंट की चर्चा करें तो प्रागी और उनके रणनीतिक सहायक वैभव सूरी ने छठे राउंड के बाद हार नहीं मानी। सूरी के अनुसार कार्लसन के खिलाफ दूसरी जीत ने टर्निंग पॉइंट का काम किया। सूरी ने कहा, आपको मैग्नस के साथ खेलने का मौका ही जल्दी नहीं मिलता, उन्हें दो बार हराना तो दूर की बात है। उस जीत ने प्रागी के लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम किया। जीत का सीक्रेट क्या रहा तो लगातार चार जीत का असली सीक्रेट था रणनीति में बदलाव और आराम। शुरुआती गेम में प्रागी समय की कमी में फंस रहे थे, इसे सुधारने के लिए उन्होंने अपनी चालों की गति बढ़ाई, उन्होंने अपनी नींद पूरी की और सुबह देर से उठना शुरू किया ताकि गेम से पहले कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कम से कम समय बिताएं। इसका फायदा यह हुआ कि जब खेलने उतरे तो पूरी तरह से ऊर्जा भरी हुई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रागी के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन विजेता एंड्रीवा की। दोस्तों, कुछ जीतें सिर्फ ट्रॉफी नहीं दिलाती हैं, बल्कि यह साबित करती है कि वर्षों से की जा रही भविष्यवाणियां सही थी। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला सिंगल्स फाइनल मीरा एंड्रीवा के लिए ऐसा ही एक पल लेकर आया, जिस खिलाड़ी को किशोर उम्र से ही महिला टेनिस का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था, उसने आखिरकार पेरिस की लाल मिट्टी पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर उस भरोसे को हकीकत में बदल दिया। रूस की 19 साल की एंड्रीवा ने शनिवार को फाइनल में पोलैंड की माजा चौवालिस्का को 6-3, 6-2 से हराकर रोला गैरो का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच केवल 82 मिनट चला, लेकिन इस जीत के मायने कहीं पड़े थे। वे 1992 में मोनिका सेलेस के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, साथ ही वह इस सदी की तीसरी सबसे युवा ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं। उनसे कम उम्र में केवल मारिया शारापोवा ने 17 साल में ये खिताब जीता था। एमा राडुकानू ने 18 साल में ये खिताब जीता था। फाइनल की शुरुआत आसान नहीं थी। तेज हवाओं और ग्रैंड स्लैम फाइनल के दबाव के बीच शुरुआती गेमों में दोनों खिलाड़ी लय तलाशती हुई नजर आईं। पहले 5 गेम तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन इसके बाद एंड्रीवा ने जिस तरह खेल का स्तर बदला, उसने मैच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर चौलिंस्का की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। 25 विनर्स और बेस लाइन से लगातार दबाव में उन्होंने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। मीरा एंड्रीवा कहती हैं कि मैं खुद को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुश्किल समय में भी मैंने खुद पर भरोसा जताया, हर दिन बेहतर खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनने की कोशिश की, और इन 2 हफ्तों में मैं कितनी नर्वस थी और किन मानसिक चुनौतियों से गुजरी, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रांची बरियातू की बेटियों की, जिन्होंने जापान में अपने राज्य का परचम लहराया और भारत को अंडर-18 एशिया कप में कांस्य पदक दिलाया। जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर-18 महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कोरिया के खिलाफ तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की और इस सफलता के केंद्र में झारखंड की 3 बेटियां रहीं, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का नाम रोशन किया। इसमें रांची की सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातू की गोलकीपर खिली, डिफेंडर सुमन सांगा और नीलम टोपनो शामिल हैं, और इनके अलावा एकलव्य रांची की श्रुति तथा सिमडेगा आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की पुष्पा मांझी और संदीपा भी भारतीय टीम का हिस्सा थी। खास बात यह है कि अधिकांश लड़कियां ग्रामीण और किसान परिवारों से आती हैं। रांची के कुंबा टोली हटिया की खिली, खुटी की सुगन और तोरपा की नीलम ने बहुत ही सीमित संसाधनों के बीच अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। झारखंड की महिला हॉकी की बात हो और बरियातू स्कूल का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनने से पहले भी यह स्कूल पिछले 4 दशकों से देश को महिला खिलाड़ी देता आ रहा है।

0: वर्ष 1984 में सावित्री पुर्ति से शुरू हुई परंपरा आज निक्की प्रधान और ब्यूटी डुंगडुंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तक ये नाम पहुंच चुका है। इस संस्थान से 60 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आज भी यहाँ छात्राओं के लिए निक्की और ब्यूटी जैसी खिलाड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए नई पीढ़ी भारतीय टीम तक पहुंचने का सपना देख रही है। बरियातू आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की खिली, सुगन और नीलम का चयन पहले भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आयोजित अंडर 18 टेस्ट सीरीज के लिए हुआ था। वहां के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें एशिया कप टीम में जगह मिली। कोच करुणा पूर्ति कहती हैं कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। स्कूल के प्राचार्य दीपक कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की इस सफलता से पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल है। वहीं पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक और अनुशासित खेल दिखाने वाली टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर एशिया का ताज हासिल किया। टीम में झारखंड खूंटी के आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोय भी शामिल रहे। आशीष फाइनल में हैट्रिक जमाकर भारत की जीत के नायक बने। तो ये हमारे स्टेट के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ की बेटियों ने भारत का नाम बढ़ाया, अपने राज्य का नाम रोशन किया। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम क्रीड़ा जगत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:30 होने वाले हैं। आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से आप सुनेंगे सांझ सरगम। शाम 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार। हमारे युवा भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा युव वाणी। चर्चा होगी बचत की आदत डालें। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। शाम 5:30 कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा धरती आबा की अमर शहादत, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर इलाज। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की।

शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार 6:02 से आप सुनेंगे। किसान वाणी, चर्चा मोटे अनाज की उपयोगिता, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और 6:32 से आप सुनेंगे हमारी दुनिया, चर्चा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:11 से आप सुनेंगे जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा। ये कार्यक्रम आज सुनेंगे आप खड़िया भाषा में। चर्चा होगी बच्चों को अच्छे संस्कार दें, मिशन इंद्रधनुष, प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की।

रात्रि पौने 8 बजे अंग्रेजी वार्ता, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, वार्ताकार हैं आर्यन भारद्वाज, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार की। रात्रि 8 बजे

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात के 8:10 विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण और रात के 9:15 आपको लिए चलेंगे दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

रात के 10 बजे गूंजे झारखंड जल संरक्षण पर आधारित लोक गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे। वाचन स्वर होगा संध्या नीलिमा टोपनो का और प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की। रात के 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा में गायन। कलाकार होंगे पंडित सियाराम तिवारी। साथियों, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पेश है कार्यक्रम सांझ सरगम। हमारे तमाम श्रोताओं को रितेश का नमस्कार।

0: शाम की तपिश में अगर थोड़ी सी ठंड थोड़ी सी राहत मिल जाए तो फिर क्या कहने। सभी श्रोताओं को रितेश का एक बार फिर से नमस्कार।
1: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

फिल्म सिलसिला में आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर को, संगीतकार शिव हरी, कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

बस ये ख्याल ही ऐसे शब्द पिरो देते हैं जो बयां करते हैं कभी आपके साथ बिताए वो बस कुछ छोटे मोटे पल, पहली बार दूसरी बार जब मिलते हैं मिले थे आप हमसे, ये बातें वो यादें बस सब जज्बात रह जाते हैं। कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं रितेश के साथ।

वाकई ये यादें लहरों की तरह ही हमारी जिंदगी में आती रहें। आप हमें याद करते रहें, हम आपको भी बहुत याद करते रहें। हमारा आपका प्यार यूं ही बना रहे, चलता रहे।

वाकई दोस्तों, जिंदगी की भी दास्तान बड़ी अजीब होती है। किसी को जो चाहो वो मिलता नहीं है। खैर, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जा रहा है। रितेश आपसे चाहता है विदा, मांगता है विदा। किसी अच्छे मोड़ पर जरूर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम, आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना अंतर्गत तेतुल बांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार A.R. रहमान के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। संध्या के 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें चर्चा की जाएगी लत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में, उसके बुआई के बारे में। मनोरंजन होगा संथाली लोकगीत से, जिसमें आप सुनेंगे बंगाली हंसता और साथियों के स्वर में। और साथ ही चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसके अलावा मौसम की जानकारी भी दी जाएगी, बाजार भाव बतलाया जाएगा और संथाली लोकगीत आप सुनेंगे पद्मलोचन बेसरा और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, कृषि ऋण के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड। भेंट वार्ताकार हैं अनूप हेम्ब्रम और भेंट करता है ठाकुर चंद्र मुर्मू। श्रोताओं, संध्या के 6 आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:06 पर आप सुनेंगे मुख्य समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे संथाली कार्यक्रम।

संध्या के 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:10 से 7:45 तक आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय है आर्थिक विकास, विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री। 7:45 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। रात्रि के 8:00 से 8:45 तक आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9:00 से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 9:15 से रात्रि के 10:00 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10:00 से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल हमारे चाईबासा केंद्र से। 10:30 से 11:00 रात्रि तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार ए आर रहमान के संगीतबद्ध के कुछ गीत, बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज पेश कर रहे हैं एक ही संगीतकार ए आर रहमान के संगीतबद्ध किए कुछ नगमे। तो सबसे पहले सुनिए ताल फिल्म।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे फिल्म रोजा का ये गीत मिनमिनी की आवाज़ में। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं ए आर रहमान के संगीतबद्ध के कुछ नगमे। अब आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दिल से, सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल हैं। चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लगान का ये गीत ए आर रहमान और श्रीनिवास और साथियों के स्वर में। जावेद अख्तर के बोल हैं।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को ठाकुर चंद्र मुर्मू का जोहार।
1: जोहार
0: किसान भाई बहनों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और आज है हमारे साथ में डोबरो जी, और हम उनके साथ बातें भी करेंगे और बहुत सारी जानकारियां भी देंगे, और इसके साथ साथ किसान भाइयों बहनों आप लोग को कुछ कुछ मनोरंजन भी कराएंगे।
1: या सर के चाषा को तीसिंग चर्चा अभिषेक दो उमिना निन चासी एकड़ रे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठाकुर जी निन योजना दो मस मत 2015 ते सेशन हो जोतने तीसिंग है नैन चर्चा रे अभिषय रे इसु बुगिन बुगिन नैन योजना रे मिना सनाम दिसुम रेन सबिन लेकन चासी होड़ो को नैन योजना पाते ड्रिप स्प्रिंकल पावरा मशीन मिनती आको अंडोगे चास बास रे या पनाइट रे हुजूतिया लेकन मशीन को सनाम चास हो गया को इसु कम प्रतिशत तरह से छूट रे देंगा को तिया सरकार पाते नन योजना में ना चिलके पावरा मशीन कोना को इन पावरा मशीन द्वारा कोना को चास्ता तिया को दुलतिया लगी इन रे 45% ते 80% जो नन रे मापी में ना ची माप में ना अंडो ओ नन योजना पाते चासी होगो को जान ओतियो अलचा पड़िए ते टायो सबिन टाइट रे दा बिटन का अंडो इन्हें ते चेक डैम पोरे चेक डैम बाइके ते दा को रखाओ का बांध

0: ᱠᱚ ᱠᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱰᱟᱢᱩᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱰᱤᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ
1: जी हाँ किसान भाइयों बहनों, ये जो हम आज चर्चा का विषय लाए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये केंद्र सरकार की बहुत ही कृषियों के लिए, कृषक के लिए और हम खेती करने वाले सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद योजना है और इस योजना का लाभ हम किसान भाई ले सकते हैं। जैसा डोगरो जी ने बता रहे थे कि अभी ये भारत सरकार का जो किसानों द्वारा आय बढ़ाने का जो उपाय किया गया है, इसको सुनिश्चित करना है उसका निश्चित आय हो कृषि से, और इस कृषि को किस तरह से सिंचाई योजना, किस तरह से कृषि कार्य में लगेंगे, इस पर भी केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। विशेषकर इसमें अब देखिएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे खेतों तक पानी पहुंचाना, सिंचाई का सामान उपलब्ध कराना, सामग्री उपलब्ध कराना, और इसके तहत कई योजनाएं हैं जैसा ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई योजना। ये सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने का पर किसानों को इसकी लागत, जो मतलब उस मशीन का जो लागत होता है, उस लागत में 45% से 80% तक का आपको मुनाफा लाभ मिल सकता है, मतलब छूट आपको उससे दिया जा सकता है। और दूसरा है आपका सिंचाई पाइपलाइन, जो हम खेतों में जो पाइपलाइन वगैरह दूर दूर तक डीप बोरिंग करके पाइप के माध्यम से हम ये जो पानी को पहुंचाते हैं, तो ये इसमें जो पाइप वगैरह का जो लागत लगता है, मोटर लगता है, और अब जो उसको डीप बोरिंग कराइएगा तो इसमें भी जो लागत लगता है, जो पैसा लगता है, उसमें सरकार द्वारा 50% का अनुदान दिया जाता है, और ये इनके माध्यम से हम खेतों तक पानी को पहुंचा सकते हैं और बहुत आसानी से हम दूर दूर तक पाइपलाइन द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जल संरक्षण, मतलब जल को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर जी, जल को जैसे वर्षा जल हुआ या तो फिर पानी, कभी कभी क्या होता है बरसात के समय में यूँ ही जैसा अभी बीच में बारिश हुआ तो बहते बहते वो चला गया, सूख गया, तो उसको अगर हम एक जगह सुरक्षित कहीं पर गड्ढा बना करके या कहीं जलाशय बना करके, छोटे मोटे कहीं पर डोभा बना करके अगर हम लोग उस पानी को संचय करते हैं तो आने वाला समय में उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सरकार इस योजना में लाभ दे रही है किसानों को, और इसमें भी कुछ छूट उन्हें दिया जा रहा है लागत में, और इस तरह से जो कृषक भाई हैं इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात है डोगरो जी कि हम इस तरह का लाभ किस तरह से ले सकते हैं।
0: या ऐसा सारे का जी चाह गया को अब ना हिंदी हम तेटा कुछ छंद में उनमें किन किन जगरत हुए सारे के ना ऐसो पूरे को ना बांधा को पेरे या ना डकुर को समा को रे निर्गड़ा या ना जो दे इन रे या तिंग को बुरे के कर दो आप मशीन द्वारा सौर ऊर्जा मशीन लेकर को इतरोगे रोवा कन बांधा को रे ओकोना को रे दा को काटा ही हुआ एने ना को रे परे के इतरो अब दा भूंडी कहते अंडो इन तारे ओतेक रे ओना बो चास करते है ना को वो दुल दहिए वो अंडो इन ते अब बुगिन लापाबो इडी दहिए।
1: हाँ, तो इसके लिए हमें बहुत कुछ, क्योंकि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होगा, इस पर भी हम कुछ बातें कर लेते हैं डोगरो जी। तो हमको सबसे पहले तो अभी आधार कार्ड है, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, और बैंक खाते की पासबुक का विवरण जो होता है वो चाहिए होगा, और उसके बाद हमको भूमि का दस्तावेज जो होता है, जो खतियान का उसका फोटोकॉपी जो होता है, ये इसकी आवश्यकता पड़ती है, और पासपोर्ट से कुछ फ़ोटो आवश्यकता अनुसार, और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अगर मांगा जाए तो ये सब चीज़ दस्तावेज के रूप में आप कर सकते हैं। तो ये दस्तावेज आप किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए आपको जिला कृषि से भी संपर्क कर सकते हैं, या तो प्रखंड में जो कृषि है या तो कृषक मित्र के माध्यम से भी इस योजना का आप आवेदन कर सकते हैं, और इस योजना से आप कई तरह का लाभ ले सकते हैं। तो विशेषकर ये जो प्रधानमंत्री कृषि

0: सिंचाई योजना है, ये इसी के लिए है, किसानों को किस तरह से खेतों तक जल पहुंचे, पानी पहुंचे, सिंचाई का माध्यम बने और अच्छी आमदनी हो उससे, यही एक सरकार का एक आत्म विश्वास के साथ ही एक योजना है।
1: ऐसो सारे का जी चासे अगर को ना बायों के या हिंदी एम के ठाकुर छंद मोरों तक ही पैते सरीगे मर उकना अर्दास सकम लोते उकन उकन अंडोगे कागज को जमायती आको मिना या आधार कार्ड को मिना पैन कार्ड को मिना पासबुक कुछी अंडो अब ओते सरिया खतियान पर्चा को इना को मिल रहे सुगलांग मिसके ते अर्दास सकम लोते अपना कृषि पदाधिकारी को ब्लॉक रे मिना को उकनाबो नन रिया लापा इडतन सनंग तनाबो एंदो नेलेकना को जुका बनो जुकना तो सिया कनाबो नेनकना लाबो इडिदैये अंडो चास बास्तरे नेलेकन जींस कोते डिंगा बो इदैये लो चास बास्तरे बुगिन दिगा नाम कहते अबो चास बास्तरे अभिनीतिर को ओरीके रखा दैये।
0: इसके बाद डोर बाबू हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अभी जो हम गर्मी के मौसम में जब कुछ कुछ हम लोग खेती करते हैं लतेदार सब्जियों की, तो लतेदार सब्जियों में भी हम सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ती ही है। तो इस तरह का जब अगर हम योजना का लाभ लेते हैं या तो इस तरह से हम सिंचाई करते हैं तो हमारा जो पानी होता है वो जहाँ हम लगाए हैं वो कल वो जड़ तक ही वो पानी जाएगा, पानी की बर्बादी नहीं होगी जो सिंचाई करते हैं। और ये जो लतेदार सब्जियों का जो अभी मौसम है हम लोग खेती कर ही रहे हैं, नेनुआ हुआ, झींगा हुआ, करेला हुआ, ये सब चीज़ तो हम लोग अभी खेती कर सकते हैं और इससे इससे भी अच्छा मुनाफा हमको मिलता है।
1: या ना कजी लेका सनिंग गोड़ा करे वो चास्तर दो चास गया को पाइपलाइन द्वारा इन तारे अपना को जूनी को पुल्लू को करेला को अपना रुआ भी डेकेड है इना को वो आसानी वो धुल दइए दरिया इन ताजोंग वो बिटा दइए अंडो बोगली का तो वो चास दइए अपना नहीं होती है उतु को नहीं जेटे असड़ा रहे अंडो गमा सड़ा जोंग रहे तुंडुं तन तुंडुं गमा सड़ा बिटन तन ने चास को नहीं जीनिस को बोगली का तो वो चास दइए।
0: हाँ डोरो जी बहुत सुंदर आपने अच्छी बातें बताई और यहाँ हमारे जो श्रोता हैं अभी कुछ उनको भी इच्छा हो रहा है थोड़ा सा कि समय हो चला है थोड़ा सा मनोरंजन का, क्योंकि बहुत देर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लगता है कि उनको कब हमको दुरंग मिलेगा उस स्टेप पर लगता है, तो चलिए ना थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं इसे।
1: ऐसो सारे का जी ठाकुर जी चिना मनते ची जमकर का हजम और हजमूला जमते दुरकर अंड मन लगा कर तो दुरंग आयुमते हुआ हुआ इना मनते ऐसो जो मन रंजाओ लगे तो दुरंग सेरेंग तगे वो और हाँ सर
0: तो चलिए ना मनोरंजन करते इस संथाली लोकगीत से बंगाली हंसदा और साथियों के स्वर में।

0: उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और से संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
1: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
2: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
3: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
4: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
5: मानधन योजना
6: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चासी आज्ञा को निन संदेश को चनम एलामियत बेपटा चपा गर्व अयुम लिया। कृषि कार्य में सोशल हेल्थ कार्ड विषय रे निन विषय रे किन चपगर तना अनुप हेम्ब्रम उन्डो बेपटा चपागर मेना कि ठाकुर चंद्र मुर्मू मरबु अयुम लिया।
4: किसानवाणी कार्यक्रम अड़ीलेकान चासबास बन गपालमारा और इन साथ बन गपालमारा उकालकाते अब रोजगार को बन दाड़ा अब चास बेसोगते को बन गपालमारा चासी बढ़ोई सलाह और इन साथ बन गपालमारा चासी को जहां मांग से को लहा उनको सलाह बन गपालमारा तो चासी बया को तेहे अड़ीलेकान गपालमारा साथ चासबास चलते बन कुरुमुटु दाड़ा तेहे अनुप कुमार हेम्ब्रम तक नसे बार पद किन लई मांगा।
5: नवा नित समय ना नय सितुम माने हुड़ू चास कमा बो चबा किया आ तो नित उनकान जिनिस को बो चासा जहाते अब आए आर हो माने हिजो मा इनकम देहर मा तबो आ तो नवा को लगे तो नय ना

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। हजारीबाग में झाड़ फूंक और तंत्र साधना की आड़ में महिलाओं से गहना ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग सदर SDPO रूपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ठगी के गहने बरामद कर लिए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड थाना अंतर्गत तेतुलबांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने आमजनों की समस्याएं सुनी और निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी चैमसा आखड़ा दो छेनु कना एपेम चंतरों रे मित से मित गेट टू द एआई मेगा हर्ट्स कोन एहो गुकना संतारी आखड़ा आखड़ा यो मणते रेडियो आजो सनाम बे हमसी को अलिन बढ़ा हसदा और सौते
1: अलिन बणजू हमरम सन कोन
0: लसणे जोहार
1: जोहार
0: जतो को गेते हिना आखड़ा रे शागुंदरम नोई दो जून महीना आरे माही तेहिं दो बाले माकना बयमसी को तो चिल का बना पे पलेन जाओ लेका के मेहनत ती मेहनत कटा ना पायरे मिना कर बुआ बयमसी को तेहिं आखड़ा दो नाजम संगिया गालोच गपल मराव और किछि ना पाय ना पाय सरेंज मन को तबे दिला नी प्रथम रे वाजम लगे गालोच बिरसा मुंडा तिकिना बारे ते बारपोत कथा बयमसी को नुआ धरती रे आयमा वीर बंटा को जन्म लेना उनको मुद्रे वीर वीर से मुंडा तिकिन हो मीन न्यूतुमान आदिवासी कोई बाबा लेखाकिन ताया बयामसी को वीर से तिकिन दो अंग्रेज शासन विरुद्ध रे अड़ंकिन उठा लिया नोकिन दो भारत रिन सनाम आदिवासी को मुद्रे मीन स्वतंत्रता सेनानी किन ताएकना बयामसी को भारत फुर्गल लड़ाई रे आकिना न्यूतुम नागाम रे मोहतान होड़ मेनते को बढ़ाया किना बयामसी को आदिवासी को दो नुकिन चांदो बंगा बराबरी को मनाओ किना आर धरती आवा नुतुम तेह को बढ़ाई किना बयामसी को बिरसे तिकिन दो 15 अगस्त 1875 रेकिन जन्म लेन ताहे दो आर 9 जून 1900 रे जाजुग लगी नौ धरती कोन की विदय चलाओ लेना बयामसी को आज बाबा नुतुम दो सुगना मुंडा आर आयोवा नुतुम दो कर्मी मुंडा ताहे कना बिरसा मुंडा तिकिना एतो हो पढ़ा दो चे बसर या लुथेरन चर्च स्कूल रे हुया बयामसी को बिरसा मुंडा तिकिना उलगुलन रेया कारण दो ताहे कना जमीदारी प्रथा आर हासा रेया टेक्स चे मालगुजारी जास्ती को हताय दिदिते अंग्रेज को सला लड़ाई लगी आतु आतु दुपड़ूप रे आकिना बिचर किन लय सदर तायन आर होड़ को किन जुमीदेट को तायन दो बयामसी को सरकार ब्रिटिश सरकार बिरसा मुंडा साब लगी ते छोल कते को साब के दिया आर कोटी जिहोल रे को दोहले दिया आर जिहोल रे 20 कते को वज के किना बयामसी को तेहना दिन आकिना जीवी चलाव लेने दीते आलिन से कौन साय साय जोहर कते लिंग हलंग होमोरे किना मातुवे खाटो मचाते निर्गमाजम के अभी सामना दिखना बारे ते बार बहुत कथा बयामसी को तो विदला नीत पौन रस का न्योगा में लांगड़े सरिंग दिकते शपलावा का को मातंग हंसदा आर सांतें को

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में नुकान परिस्थिति सब वापस को रुआ
3: मोर नाम मंगल बोरा एक गाँव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मैंने आए वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए है
5: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा ऐसा करना ऐसे दुख रहा मिना अन्य यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा मिका
6: अन्य नितुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं दुर्गम गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया नु तुम कहीं ना आप ही लेता ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: बयाम सिखो देलानीत बन आजम संगे मित गपल मराव भिड़ी आसूल इदी कते नवा गपल मराव

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. So easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आबो जिले रे अडिगान उनकान गिद्रा मेना कोआ ओखोरिन आयो बापा बनु कोआ आर आयो बापा मेना कोआ मेनखान जाहान कारण ते आको गिद्रा बाको नेल दारे कोआ नुकान गिद्रा उनकु हेबे इदि लागि दो वर्तमान रे संस्थागत देखरेख रे को ताहेना नुकान गिद्रा को लागि के सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाओ कना नुआ दो पालन पोषण देखरेख योजना हो को मेता नुआ योजना दो उनको गिद्रा लगित मिना जहाँ परिवार रे नेल रे अडी दरकार मिना नुकु उना इदी कते 18 बरस पूरा धरी पालन पोषण देखरेख इदी कते को लाभ को एम दाड़िया को नुआ इदी कते दो भावी आयो बाबा उम्र जोड़ दो 115 बरस कौन डेहर बांग हुई दरकार और जुदी एकला होड़ जहाँ गिद्रा असूल सनाए कना इनकान उनिया उम्र कम से कम 35 बरस और बानारा उम्र मेसा लेकान 115 बरस कौन डेहर बांग हुई दरकार और उनका हो टंगवे कोड़ा दो गिद्रा कुड़ी दो बाको एमा को अगर आबो पश्चिमी सिंहभूम जिला रे निवासी कनाबन आबो ठेन मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन खन न्यामकान और बांखान परगया केंद्र खन न्यामकान पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दरकारा आयो बापा हड़मते बेस और मानसिक रूप तकिन स्वास्थ्य किन ताहे दरकारा नुआ योजना इदी कते दरकारकान परिवार दो सरकार सेन खन महीने 4000 टका गोड़ो को एमा को डेहर जानकारी लगे जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 909070700489 रेबन संपर्क मा आर बांखान जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तला चाय बसार हेज कते जानकारी बन हता दड़ेया
4: बयाम सिखो दिला आखड़ा मचे रेमिन दोंग सरेंग के बोन सकर निवा सपड़ा वका को सत्य किंकर मुर्मू और सावतन को

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। अब आपको लिए चलते हैं हमारे राज्य केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: श्रोताओ, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची के अंदर से शाम के 7 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर-18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने भी रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
2: भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। उन लोगों नतमस्तक करते हुए अपने पूरी सद्भावना इनके प्रति अर्पित करता।
1: वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है।
3: लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी, जलापूर्ति योजनाओं के नियमित मॉनिटरिंग तथा जल सहियाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी भूमिका सशक्त बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने तथा अनुपयोगी चापाकलों को रिचार्ज पिट के रूप में उपयोग करने के निर्देश भी दिए। झारखंड में पहली बार 16 से 18 जून तक कृषि व्यापार मेला का आयोजन राजधानी के मोराबादी मैदान में होने जा रहा है। राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह मेला इसलिए खास है क्योंकि इस मेले के जरिए किसानों, कृषि उत्पादों के व्यापारियों और देश के

0: जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश हो रही है।
1: ये कार्यक्रम इसीलिए भी हमारे राज्य के किसानों के लिए विशेष है, क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल किसान नहीं मगर किसान के साथ साथ व्यापारी, साथ ही साथ वैज्ञानिक गण, इसके साथ ही उद्यमी गण, तमाम लोगों को एक ही मंच में लाने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
0: झारखंड हाई कोर्ट में आज वर्ष 2018 से लापता गुमला की 6 वर्षीय बच्ची से जुड़े मामले में दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें गुमला के एसपी और एसडीपीओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की आरोपी महिला के नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दिया गया है और सक्षम अदालत से अनुमति मांगी जा रही है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए मामले की प्रगति पर गंभीरता जताई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। झारखंड सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 2% की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब 58% के बजाय 60% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। राज्यसभा चुनाव मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में पार्टी किसी भी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।
2: कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, क्योंकि हमारे साथ संख्या बल नहीं है, हम जोर तोर की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले में उत्पादित रसीले आम अब देश की सीमाएं पार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से जिले के करीब 1.5 टन आमों की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप आज उपायुक्त राजीव रंजन ने लंदन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
3: जमशेदपुर को एक नया बाजार मिल रहा है जो कि विदेश यूके में अवस्थित है, और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और भारतीय आम का स्वाद जो है वो विदेशों में पहुंचेगा। 1.5 टन जा रहा है फर्स्ट लॉट में, दूसरे देशों में भी भेजने का प्रयास चल रहा है, जैसे दुबई वगैरह भी भेजने का ऐसा चल रहा है।
0: खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ की ओर से अंडर-18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
4: खूंटी जिले के कुछ बच्चे और बच्चियां हैं, एट द सेम टाइम हमारे राज्य के भी बहुत बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने मेंस में हमारा गोल्ड और वुमेन्स में हमारे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि ऐसे बच्चे भविष्य में भी हमारे राज्य, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक हॉकी से संबंधित है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम वगैरह की, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है। आने वाले टाइम में और भी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होगा, उसको फुलफिल करके उनको बेहतरीन माहौल और सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि।

0: राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर 18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने 2 बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा के विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
2: और अब

0: कहते थे कि फ्रेजाइल फाइव में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण नवनिर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर, इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे, ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया, टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर,

0: ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। क्योंकि ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी

0: जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे,
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का

0: संकट था। पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
1: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
0: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है?
1: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
0: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
1: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
0: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
0: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
1: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है, और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
0: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
1: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
0: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं, उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी

0: देखेंगे कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या। अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला हमारे दिल्ली केंद्र से, सरकार के 12 वर्ष। विषय था आर्थिक विकास, विशेषज्ञ वरिष्ठ अर्थशास्त्री। अब वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का, तो लीजिए कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शुरू करते हैं इस गीत से। रोजा फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवाशेरे। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरे, सुरुमानी मुंडरे, हरामानी मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरे, पाड़ापुर शिवाजी, साजन मुंडरे, डोबरो मुंडरे, हिमांती मुंडरे, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरे, जानुम सिंह मुंडरे, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरे। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुढ़ाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। आवाज है हरिहरन की और संगीत है ए आर रहमान का। आपको हम सुनवा रहे हैं रोजा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है गोलमाल। किशोर कुमार की आवाज है, राहुल देव वर्मन का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं चाईबासा आमला टोला से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। रेलवे रोड गजडुंड वारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी और टी एच बच्चन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। इन सब की फरमाइश पर सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म फकीरा का ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में रविंद्र जैन का संगीत था। और इस गीत को सुनना चाहते थे बड़ा जिम्बी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू। दंतरेगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, दंतरेगी छत्तीसगढ़ से ही हैं। और इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीकंधा।

0: कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म डॉन के इस गीत से। किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं माहौलडिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदिनी, आयुष महतो, गीतेश महतो, संतोषी दीपक, संतोष राहुल, अनु तनु भाई, नंदू महतो। मेन रोड सुनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान और नीलपानी प्रधान। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी और अनामिका कुमारी। ग्राम पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजीव महली और विजय बेसरा। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है डॉन।
1: भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है। इस गीत को आवाज दिया है सुरेश वाडेकर और संगीत को लिखा है संतोष आनंद और लक्ष्मी संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेला। सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा। ग्राम के लिए लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अनु, बनमाली और सिद्ध कुमारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जितेंद्र बीरक और मिका बीरक। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां। इन सब की फरमाइश पर आइए सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे फिल्म गोपी किशन का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और उसके पहले आपको हमने सुनवाया था मिघरे मिघरे से जो गीत था वो था प्यासा सावन से। और उसके बाद आपने सुना फिल्म हमराही से गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अनजान के बोल थे, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इन गीतों को सुनना चाहते थे गाँव हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और साथी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल राठौर, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े, टुंगरी चाईबासा से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, प्रियंका पंडित और के पाठक, रिया और प्रिया पाठक, श्रीमती अनीता मिश्रा, सेक्शन 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, लिदिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश आबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल श्रीमती शीतल राजेश। अब आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है गदर। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है उत्तम सिंह का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर राही, श्रीमती शता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर, श्रीमती वैशाली शैलेश ग्वाणकर, श्वेता सुमित ग्वाणकर, कुमारी ध्वनि ग्वाणकर उपरी, ये हैं बाहुदारा नागपुर से, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाणकर, प्रणीता ग्वाणकर, लाडला टुक टुक ग्वाणकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। चलिए इन सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं फिल्म गदर का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको सुनवाते हैं फिजा फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और करसम रचिया की आवाज़ में। तेजपाल कौर का गीत है। अब इस गीत को सुनना चाहते हैं बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल, रोहन, छोटा निमडी, चाईबासा से, खमरिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति।

सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्ताफा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिजा का ये नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं इनके पसंद पर गीत। गांव चांदपुर पोर्टकास्ट से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका, शिवम मौसमी और संतोष आनंद, नाच मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाच, सुमैरा नाच, आबिहा नाच, शाहीन नाच, नूरी नाच, बच्चू शेख, चीना शेख, कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से फौज मोहम्मद फैजल शेख, नुजात जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, विनीश कुमार ब्राग्नेश श्रीवास्तव और मुस्कान बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से चनहटी बरेली से, बठेना से बलकनन अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म का नाम है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। आशा भोसले और अभिजीत की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा भी यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा

0: पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government

0: बीजी रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, जरई तजारत, माहौल दोस्त जरई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूद पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तहान के मराकज तक पहुंचे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सह फरीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Money Talk. This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on understanding RBI's monetary policy, supporting growth amid inflation risks. The participants are Dr. S.P. Sharma, economic analyst, and Rajesh Lake, anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. Today's episode couldn't be more timely. The Reserve Bank of India finds itself navigating one of the most delicate balancing acts in recent memory, keeping the engine of

0: man kann.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
3: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 180,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप। और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज है वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कमिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
2: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
3: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। फिर सातवां है जो उनकी मुख्य जांचें होती है, जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
2: बिल्कुल, तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं, उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
3: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती है, उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहने हैं और आशा बहने प्रेगनेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
2: बिल्कुल।
3: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
2: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
3: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब 5th ANC, 5वां अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा हाई रिस्क फैक्टर्स, करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
2: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो?
3: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
2: जी,
3: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले दो दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर

0: रहा है वो हमारा 26 प्रति हजार लाइव बर्थ था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति हजार लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट एसआरएस आया है उसमें आया है। उसमें भी जो यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, यूएनआईजीएमई रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गाँव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, एएनएम हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
0: आशा वर्कर्स हैं ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, की डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहाँ पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है, प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है। तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो एएनएम दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और एएनएम दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनता है, हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, एएनसी चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है। तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Manthan.

श्रोताओं की आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के स्वर में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला शुरू।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सुरों के रंग कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। आशा भोसले की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम सुरु के रंग। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं से। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजें हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है एक था राजा। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं और आनंद मिलिंद का संगीत है।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गुरु का ये गीत ए आर रहमान और चिन्मय की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित

0: शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer, and cyber strength.